नमस्कार, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी जलंधर केंद्र दा FM रेनबो चैनल है। अज शक संवत 1947 दे ज्येष्ठ महीने दी 6 तरीक तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे मई महीने दी 28 तरीक है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे ने ते साडी अज दी सभा हुण शुरू हुंदी है। FM रेनबो अपने सारे स्रोतियां दा निग्गा स्वागत करदा है।

विकास बहुत महत्वपूर्ण है। आसाम विधानसभा ने इकसार सिविल जाब्ता बिल पास कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर विच 2023 दी हिंसा नाल संबंधित चल रहे मुकदमियां नू तेज करन दी लोड़ ते जोर दिता है। कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत ने संबंधित अधिकारियों नू साबका सैनिकां लई रोजगार दे बेहतर मौके प्रदान करन ते दिते निर्देश। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सरहद पारों गैर कानूनी हथियारों की तस्करी वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश करदियां 5 मुलजमान नू 8 आधुनिक पिस्तौलां अते कारतूसां समेत कीता है गिरफ्तार। ECG हुण तक दी FM न्यूज़ हेडलाइंस।

प्रोग्राम चल रहा है जी। गुड मॉर्निंग जलंधर, इंजॉय तो कर रहे हो अपनी दोस्त आरजी शाहिन दे नाल। गीत हजे इंजॉय अपा कीता या की दी आवाज दे विच महबूबा। लो जी, फिर जिदा मैं किया सी कि एक रेसिपी तुहाडे नाल मैं सांझा करूँगी। हाँ, थोड़ी जी अनोखी अज, क्योंकि अज हैगी ईद। पहले तो तुहानू सारिआं नू ईद की बहुत बहुत मुबारक। इदा ही हर त्यौहार, जिन्ने भी त्यौहार ने, भावें वह किसी भी रिलीजन का हो, सानू सारिआं नू मिलजुल के सैलीब्रेट करना चाहिए। जो आप कोई भी त्यौहार होंगे मिलजुल के सैलीब्रेट करते, मैं कहती कि उनकी जिहड़ी खुशी है ना, उहदा जिहड़ा प्यार है, जिहड़ी उस त्यौहार की मिठास है, वह होर भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसे मिठास नू बरकरार रखते हुए अज मैं तुहाडे नाल शेयर करूँगी मिठी मिठी जिहड़ी सेवियां होंदियां ने। खासकर आप वैसे तो ईद ते सेवियां बनाउंदे ने, पर जिन्हां नू बहुत ज़्यादा पसंद है मैनू लगता वह तो बनाते ही रहेंगे या बनाते ही रहेंगे ने। तो ईद के इस त्यौहार से सेवियां की जिहड़ी मिठी जी रेसिपी है वो तुहाडे नाल मैं शेयर करन जा रही हाँ। फटाफट तुसी नोट डाउन करो, तो सवेर नू भी वैसे तुसी खा सकते हो। दिन की शुरुआत थोड़ी जी मिठास नाल आपां कर सकते हैं। हाँ, वैसे रोज़ नहीं खाना चाहिए, लेकिन त्यौहार से थोड़ी जी चीटिंग हो सकती है। सब तो पहला आप करना की है, सब तो पहला एक पैन दे विच आपां थोड़ा जिहा देसी घ्यो पा के उनू गर्म करना है। उस दे विच आपां सेवियां नू हल्का जिहा गोल्डन रोस्ट करना है। उस तो बाद जदों सेवियां दी खुशबू पूरे घर विच फैल जाएगी, समझ लो ईद वाली जिहड़ी फीलिंग है, त्यौहार वाली जिहड़ी फीलिंग है, वह सारिआं तक पहुँच जाएगी। हुण उहदे विच थोड़ा जिहा दुध आपां पाउणा है, ते प्यार नाल हल्की आँच ते उसनू पकाना है। फिर उस तो बाद शक्कर पानी अपने स्वाद अनुसार, वैसे गुड़ की जिहड़ी सेवियां वह भी आप खा सकते हैं, वह भी बहुत ज़्यादा स्वाद होंगी है। उस तो बाद आप इलायची पाउडर पाना है, थोड़ी जी बादाम। हाँ, वैसे ना जिहड़े ड्राई फ्रूट्स ने उन्होंने भी आप रोस्ट कर सकते हैं वधिया तरह देसी घ्यो दे विच। जे नहीं करना वो फिर तुहाडी मर्जी है। उस तो बाद उस दुध दे विच इलायची पाउडर पा के

0: प्रोग्राम तुसें इंजॉय कर रहे हो। गुड मॉर्निंग जलंधर। जिवें मैं कहा सी कि इस ईद के त्यौहार ते एक होर दिन इदा दा खास है, किसी की बर्थ एनिवर्सरी है। इस दे एक्सपर्ट दे नाल अपा करांगे गलबात।
1: जिथे रंगा वाली होली होवे, दीवियां वाली दिवाली होवे, ते जिथे प्यार ते शांति नाल क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, या जां होवे ईद, हर त्योहार खुशियां नाल मिलजुल के सेलिब्रेट किया जाता है। FM 102.7 MHz ते तुसी ट्यून किया होया प्रोग्राम चल रहा है जी गुड मॉर्निंग जलंधर। आज बकराई दिन असी सेलिब्रेट कर रहे हैं इतिहार। इस मौके पे असी आज गल करांगे मौलाना कुतुबद्दीन जी दे नाल, जो कि लुधियाना तो नहीं। सर साडे नाल कॉल ते जुड़ गए ने, करदे हां उन्हां नाल गलबात। हैलो।
2: हैलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है कुतुबद्दीन जी आपका हमारे गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम में। जी तो मौलाना साहब, जैसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारक है आपको भी। जी वैसे तो देखा जाए तो जो मीठी ईद है वो एक खुशी का और प्यार का त्योहार है, ये मनाया जाता है। मीठी ईद के डेढ़ महीने बाद शायद ही बकराईद का त्योहार आता है। कुतुबद्दीन साहब से ये पूछना चाहूंगी कि बकराईद का जो त्योहार है इसकी हिस्ट्री क्या है, ये त्योहार हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं?
2: ईद उल फित्र मीठी ईद को कहते हैं और ईद उल अजहा बकरीद के दिन को कहते हैं।
1: जी।
2: तकरीबन मीठी ईद के ढाई महीने बाद बकरीद का दिन आता है।
1: जी, ढाई महीने बाद। ठीक है,
2: ढाई महीने के बाद।
1: जी।
2: और इसका मकसद ईद उल अजहा का, बकरीद का, ये है कि इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि रब की मर्जी के मुताबिक, रब की रजा के खातिर इंसान अपनी जान माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करता है, अल्लाह की रजा के लिए, रब को खुश करने के लिए, रब को मनाने के लिए।
1: जी।
2: इस बात को जाहिर करता है इंसान कि हम जो आए हैं दुनिया में ये रब के लिए आए हैं, और जो कुछ भी रब ने हमें दिया है ये सब भी रब ही के लिए है।
1: जी।
2: इसलिए हम अपनी जिंदगी में सारा मसला, उठना बैठना, खाना पीना, जागना सोना लेटना और सारी बंदगी, सारा जद्दोजहद, सारी खुशियां और ये सारी नेमतें, ये सब रब की रजा के लिए पेश करें रब की बारगाह में, ताकि रब हमारे हर अमल से राजी और खुश हो जाए।
1: जी।
2: ये मेन ईद उल अजहा का मकसद है और ईद उल अजहा इसी मकसद को बयान करता है। जैसा कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम एक पैगंबर थे, जिन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहि सलाम, वो भी पैगंबर थे, बाप भी पैगंबर और बेटा भी पैगंबर। तो बाप हजरत इब्राहिम ने बेटा हजरत इस्माइल

0: इत्तेफाक और मोहब्बत को भी कायम रखे।
1: जी मौलाना कुतुबुद्दीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल के आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जुड़े, और इस त्योहार को कैसे मिलजुल कर मनाना चाहिए वो आपने हमारे साथ बयान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया
2: जी दोस्तों, ए सी मौलाना कुतुबुद्दीन जी जिन्होंने इस खूबसूरत त्यौहार नू फेस्टिवल नू किवें मिलजुल के सैलीब्रेट करना चाहिए है। कोई भी त्यौहार इदा दा हुंदा है भारत दे विच, भावे दिवाली होवे, भावे होली होवे, भावे क्रिसमस होवे, असीं एक दूजे दे घर जांदे हां, खुशियां जिहड़ियां ने ओह वंडदे ने, एक दूजे दे नाल मिल के सैलीब्रेट करदे ने। ते अज वी इदा त्यौहार है, तुहाडे जिहड़े दोस्त ने उहनां दे घर जाओ, तुहानूं इन्नियां टेस्टी टेस्टी जिहड़ी डिशिज़ ने, रेसिपीज, हाँ डिशिज़ ही कह सकदे हां आपां, ओह मिलजुल के जदों आपां खांदे हां, गल्लां करदे हां, मतलब खुशियां जिहड़ियां ने ना ओह वंड के डबल हो जांदियां ने। ਅਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਵਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ।

0: जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: तुसी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बारे सुनिया है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इस नाल तोड़ा कर सूर्य घर बन जांदा है, यानी तोड़ा बिजली दा बिल जीरो। होर पैदा हुई कोई भी वाधू बिजली ग्रिड नू बेच के पैसे भी कमा सकते हो। ता तुसी बैठे क्यों हो? हुणे रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov

0: जी नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है साडी गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम च तुहाडा।
1: धन्यवाद
0: जी। ते सर ये जेडे शख्स ने महान शख्स ने इन्हां बारे अज आपां गलबात करांगे। पहला तो मैं तुहाडे तों आही पुछना चाहांगी कि विनायक दामोदर सवारकर जी ये कौन सन ते उन्हां नूं वीर सवारकर क्यों कहा जांदा है?
1: वीर दामोदर सावरकर
0: जी
1: इस देश दे सब तो क्रांतिकारी नेता सन
0: जी,
1: स्वतंत्रता सेनानी सन। और जो यो यातनावा उन्होंने अपनी जिंदगी च आजादी प्राप्त की, ऐसा कोई शख्स मेरे हिंदुस्तान के इतिहास च नहीं मिलता जिंदा सावरकर
0: जी।
1: हाँ
0: जी,
1: अंदाजा लगाओ ओरी सारी जिंदगी जेलों च कट गई, अंग्रेजों यातनावा सहदी बीत गई। इसी गल ने मेनू ना जी अंडेमान निकोबार लै करके MLA की एक टीम नू जाना पिया। उतों दी सैलूर जेल नू मैं देख करके धावा मार मार के रो पिया, इस काले पानी च वीर सावरकर जैसे आदमी की छोटी जी ने कोठरी च तैर करके रखा भी 6 महीने ओनू किसी ने गल नहीं करनी थी। ओनू दे दल की तरह ओनू नारियल का तेल कढ़न लई मजबूर किया गया। उस आदमी के पैरों च बेड़िया पाई गई, जे निश्चित मात्रा तो घट तेल अगर नारियल का कटिया तो कोड़े पैणगे, अगर किसी ने गल की तो कोड़े पैणगे। उथे खाना उथे पीना उथे शौच इत्यादि करनी, वो जेल देख के कमरा देख के मैं डर गया। और कोलियां नाल कंकड़ा नाल दीवारा से कवितावां लिखिया उसने वीर सावरकर
0: जी।
1: कंकर पत्थर नाल दीवारा पाल करके वो कविता मैनू अपने ओदे च मैं मोबाइल से की पर मैं ऐसा क्रांतिकारी दुनिया च देखा नहीं कि भाई ऐसा आदमी भी है कोई वीर सावरकर वर्गा इतिहास च नहीं है।
0: जी बिल्कुल जी सर। सर सावरकर जी का भारत की आजादी की लहर विच सब तो वड्डा योगदान की रहा है?
1: देखो जी, उसने रत्नागिरी च नजरबंदी च नासिक जेल च अंडीमान जेल च अंग्रेजों के खिलाफ इस हिंदुस्तान को आजाद कराने वास्ते ना जी उसने सारी जिंदगी लड़ाई लड़ी। उसने इस हिंदुत्व जी नू कहने हिंदू कौन है इस शब्द की उन्होंने बड़ी व्याख्या के पास किताबा चार पांच नए बसा वर्ग कर दिया। हिंदुत्व च उन्होंने पूछा है लोगों को कि दसो हिंदुत्व की है। हिंदू वो है जिहड़ा सिंधु नदी तो लै करके हिंद महासागर के अंदर विशाल भू भाग नू अपनी पितृभूमि पुण्य भूमि मातृभूमि समझदा है, वो हिंदुस्तानी है। भावे वह मुसलमान है, भावे सिख है, भावे वह ईसाई है, भावे किसी भी धर्म है, भावे बोधी है, पारसी है, जैनी है, ये सारे हिंदू है जेडे इस देश की धरती नी कश्मीर तो कन्याकुमारी तक जेडे इस देश नू अपनी पितृभूमि अपनी मातृभूमि और अपनी पुण्य भूमि समझते ने। और इस देश की मिट्टी नू मत्थे ते लगा करके एक प्रसाद की तरह अपने आप नू अलग कर रहे ने, वो हिंदुस्तान है
0: जी।
1: हिंदू जी कोई धर्म नहीं है, एक जीवन पद्धति है, एक सांस्कृतिक मंच नू हिंदुत्व का एक राजनीतिक मंच उन्होंने खड़ा करता जी। तुम अंदाजा लगाओ अकेला आदमी उसने राष्ट्रीय स्वयं सेवक भी अंदाजा नहीं सी होया जिस वेले उसने हिंदुत्व की व्याख्या सारे देश की। अज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो दुनिया की सब तो बड़ी संस्था है वीर सावरकर को फॉलो कर रही है, तू इन विन फॉलो कर रही
0: जी।
1: और ऐसे इंसान मैं समझना या गुरु गोविंद सिंह जी से

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा। एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है।

प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो। गुड मॉर्निंग जलंधर, अपनी दोस्त आरजी शाहिन दे नाल। ते दोस्तों, जिवें कि सानू सारियां नू पता है, आपां जिहड़े महसूस कर रहे हैं गर्मी अज्जकल बहुत बहुत बहुत ज़्यादा हो गई है। ते गर्मियां दे विच अपना तो ध्यान रखना ही चाहिए है, नाल ही अपने घर दे विच जिहड़े आपां इलैक्ट्रॉनिक जिहड़ी चीज़ां ने वो यूज़ कर रहे, उन्हां दा भी ध्यान सानू रखना चाहिए। अज्जकल आपां बड़ी न्यूज़ सानू सुनन नू मिल रही है, आपां देख भी रहे हैं कि गर्मी करके कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक ही चीज़ है कि हाल फिलहाल मैं एक न्यूज़ सुनी सी कि जिथे साडा जिहड़ा फ्रिज है रखा, जो किचन च रखा होया या फिर जिथे भी रखा है, उस दे आस पास या पिछे थोड़ा जा गैप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जे हवा जे वेंटिलेशन नहीं होगी तो फ्रिज का जिहड़ा कंप्रेसर है वह ज़्यादा गर्म हो सकता है, तो ओवर हीटिंग नाल खतरा भी बढ़ सकता है, उस दे विच अग भी लग सकती है। तो इसे नू लगातार बिना रेस्ट दे सानू नहीं चलाना चाहिए, सारियां नू थोड़ी जी रेस्ट की जरूरत होंदी है। बिल्कुल इसे तरह ही एसी नू भी, पखे नू भी, कूलर नू भी थोड़ी जी रेस्ट की जरूरत, थोड़ा जा ब्रेक उन्हां नू भी चाहिए है। तो ये जिहड़ियां चीज़ां ने इन्हां दा सानू बहुत खास कर ख्याल रखने की जरूरत है। तो नाल ही सानू अपनी जिहड़ी सेहत है उसका ध्यान रखने लई भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिन्ना हो सके सानू हाइड्रेट रहना चाहिए, पानी जिन्ना हो सके उन्ना पीओ। नारियल पानी साडे कोल किन्ने ज़्यादा ऑप्शनस ने, आपां नारियल पानी पी सकते हैं, निम्बू पानी पी सकते हैं, इदां दे जिहड़े सीजनल फ्रूट्स ने जिहड़े पानी की कमी दूर कर सकते हैं। डीहाइड्रेशन जे सानू हो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो दोपहर 12 बजे तो लैके 4 बजे तक जे हो सके बाहर ना निकलो, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा धुप होंदी है। तो बाकी मैं लगता है कि प्रोग्राम दे विच जिवें जिवें आप रोज़ करते हैं, तो गर्मी का कुछ ना कुछ इदा दा टॉपिक होंदा है तुहाडे नाल आपां शेयर करते हैं कि चीज़ों का सानू ध्यान रखना चाहिए है, ये भी आपां तुहाडे नाल शेयर करते ही रहिंदे हां। उम्मीद करती हूँ दोस्तों तुसी गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम मेरे नाल इंजॉय किया होगा, बहुत मज़ा आया मैनू तो। बहुत सारिया आप जिहड़ियां टॉपिक से गल्लां कीतियां, तुसी इंटरव्यू सुने दो साडे एक्सपर्ट्स दे नाल। ते हुण तो थोड़ी देर बाद ठीक 8:30 तुसी इंजॉय करोगे, तुसी सुनोगे तुसी प्रदेशिक चैनल तो पंजाबी च खबरां, उस तो बाद तुहाडे सारिआं दा फेवरेट जिहड़ा प्रोग्राम है अड्डी टप्पा, बैक टू बैक पंजाबी गीत मैं प्ले करांगी। तुसी जाना कितने नहीं है, बने रहना है साढ़े नाल। फिलहाल तुसी इंजॉय करो जसबी की आवाज़ के विच ये गीत, तुहाडे सारिआं दे रेडियो सैट दे अख दे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली विच 51वीं प्रगति मीटिंग की प्रधानगी की। करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 7 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों नू कौमांतरी सरहदां दे 15 किलोमीटर दे अंदर सारे गैर कानूनी ढांचे ढाउण लई कहा। सर्वोच्च अदालत ने कालजियम दे 4 हाई कोर्टां दे मुख जजां ते सीनियर वकील वी मोहना नू सुप्रीम कोर्ट दे जजां वजों तरक्की देण दी सिफारिश कीती। केंद्रीय सेकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड ने हैदराबाद स्थित कंपनी को एम्प्ट एजुटेक नू प्रीख्या मुलांकण दा ठेका देण संबंधी इल्जामां नू रद्द कीता। संघ लोक सेवा कमिशन ने पहली बार सिविल सेवावां मुढली प्रीख्या 2026 लई आरजी उत्तर कुंजी जारी कीती। उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक अपने इतराज जमा करवा सकते ने। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने लुधियाना विखे तैनात सहायक सब इंस्पैक्टर नू 14,000 रुपए रिश्वत लैंदिया रंगे हथीं काबू कीता। मौसम विभाग ने अज तो पंजाब ते हरियाणा च कई थावां ते गरज चमक नाल मीह दी पेशिनगोई कीती। देश दे वख-वख हिस्सें विच अज ईद उल अजहा धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाई जा रही है।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 FM रेनबो। ते दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है जी गीत बहार, तुहाडी अपनी दोस्त निवेदिता दे नाल। वेल दोस्तों प्रोग्राम गीत बहार दे विच असी गीतां दी बहार जरूर लगावांगे, ते नाल नाल मैं थोड़े नाल गल्लां भी जरूर करनी है, क्योंकि जब तक मैं गल्लां ना करां ते फिर मैनूं गीतां दी बहार दा भी मज़ा नहीं आउंदा। सो दोस्तों प्रोग्राम नू असी शुरुआत देन लगे हाँ जी। पहला गीत जो मैं लगान लगी हाँ तुहाडे लई पूरा मुहब्बत भरिया जी, अली ब्रदर्स की आवाज़ दे विच प्ले करन जा रही हैं गीत सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे लई मुहब्बत। तुसी इसे तरह ही बने रहना, FM रेनबो ते जाना किते भी नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम गीत बहार दे विच बहुत सारिया गल्लां ते बहुत सारे गीत मैं तुहाडे लई लेके आई हाँ। सो इंजॉय करते हैं जी ये गीत अली ब्रदर्स की आवाज़ दे विच मुहब्बत।

मोहब्बत का मजा ही जुदाई के बाद है, लेकिन दोस्तों आप मदद जुदा होना ही नहीं है, क्योंकि आप एंजॉय करना है प्रोग्राम गीत बहार। सो अगे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, गर्मी का मौसम अब तो चुकी जाता है ना, गर्मी पूरे जोरों शोरों नाल पै रही है, ते बहुत ज़्यादा कई बार हुमस जी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है, ते की करना है। जी बिल्कुल, अपने आप में हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। सो जदों भी घरों निकलो, चाहे प्यास लगी होवे चाहे ना लगी होवे, चाहे होवे कि सिर्फ 5 मिनट विच ही तो वापस आ जाना, इत्थे कितें जाना है, तद भी अपने नाल पानी दी बॉटल कैरी करना बिल्कुल भी नहीं भुलना जी। और प्यास लगे ना लगे, असी थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीना ही पीना है, क्योंकि इस दी साड़ी बॉडी नू बहुत ही जरूरत है। असी वेट नहीं करनी कि जदों प्यास लगेगी उदों ही पानी पीवांगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पींदे रहना चाहिए है। और बहुत वधिया होएगा जेकर दिन दी स्टार्टिंग असी पानी दा ग्लास पी के करिए, ते जेड़ी दिन दी क्लोजिंग है वह भी पानी पी के ही करिए, क्योंकि रात पर फिर साड़ी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। जदों सवेरे उठना है तो फिर भी पानी की जरूरत है, क्योंकि बॉडी नू एक्टिवेट करन दे लई सानू पहला गिलास पानी दा जरूर पीना चाहिए है। और सारा दिन तो फिर तुसी नाल थोड़ा थोड़ा पानी पींदे ही रहना, क्योंकि गर्मी के मौसम में बॉडी नू सब तो ज़्यादा जरूरत होंगी हाइड्रेट रखन की, ता ही तो साड़ी बॉडी भी ठीक तरह नाल फंक्शन करेगी और साड़ा दिमाग भी ठीक तरह नाल चलेगा, बॉडी च एनर्जी भी ता ही बनी रहेगी। सो पानी नू अवॉइड बिल्कुल नहीं करना, और हमेशा अपने नाल सोहनी जी पानी की जड़ी बॉटल है वो तुसी कैरी करनी है। सो प्रोग्राम नू अग्गे तोरदे हाँ जी, क्योंकि जुबिन नौटियाल दी आवाज़ दे विच गाना त्यार बर त्यार रेडी है जी, तुहाडे लई मैं प्ले करन जा रही हाँ। सुन के वापिस आ जाना, क्योंकि मैं हाले इत्थे बैठी हुई हाँ।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे एह कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: इंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम गीत बहार। गीत बहार दे विच निवेदिता है तुहाडे नाल

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत दी जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालो नाल नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज अते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 134वीं कड़ी

तुसी सुन रहे हो जी 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों गीत बहार। दोस्तों गीत बहार प्रोग्राम दे विच एक मेन गल रह गई सी गल करनी जी बिल्कुल, वो केड़ा पॉइंट सी जेड़ा मैं मिस कर गई सी, वो ए कि समर वकेशन शुरू हो गई ने ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स दे विच कॉलेजेस दे विच, और कई हो गई ने कई दे विच दो चार दिन दे बाद हो जानिया ने, और मोस्टली घर दे विच प्लैनिंग चल रही है कि समर वकेशन दे विच कितने घूमन जाना है ना, चल रही है ना यही गलबात, डिस्कशंस हो रही ने, कोई कहता इतने जाना है, कोई कहता उत्थे जाना है, और ऐसे टसलबाजी दे विच कई बारी डिले हो रहा है या प्री प्लानिंग चल रही ने, बहुत कुछ इस मुद्दे ते घरां दे विच हो रहा है। सो दोस्तों थोड़ा जिहा विच मैं भी अपना ना योगदान दे दिया कि मैं पिछे ना रह जावां। सो प्री प्लानिंग बहुत जरूरी है जदों तुसी किते घूमन जा रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हुंदा है रोड्स ते, साढ़े विच की है जेकर एक जना उत्थे चले अच्छा असी भी उत्थे चलते असी भी उत्थे चलते, पर यह नहीं सोचते कि जो एक जगह ते सारे जने जाणगे तो उत्थे किन्ना भीड़ भड़का हो जाएगा, उहदे नाल दिक्कतां सानू भी आणगियां। सो जेकर असी फाइनल कर चुके हैं अपना डेस्टिनेशन कि असी इत्थे जाना है, तो फिर प्री बुकिंग है जिहड़ी वह मस्ट है दोस्तों। उहदे नाल की हुंदा, एक तो साडा टाइम सेव होएगा, असी जाके उत्थे होटल्स लब्भांगे या कुते होर असी बुकिंग करवानी है, जदों जाके करवावांगे तो टाइम साडा वेस्ट हुंदा। सो पहले बुकिंग करवाइए ताकि टाइम भी सेव होवे, और सम टाइम्स प्री बुकिंग के उपर सानू डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं, ये पैसे की भी बचत हो जाती है। और प्री प्लानिंग दे विच एक चीज़ होर ये शामिल है कि जेड़े उस एरिया दे लोग होन या साड़े कोई रिलेटिव उस पासे रहंदे होन, नहीं तां साड़ा जो इंटरनेट है ये भी सानू प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दिंदा है कि केड़े आर्स दे दौरान केड़े घंटिया दे दौरान रोड्स वेलियां हुंदियां ने। सो कोशिश करो कि जदों सड़कां सानू वेलियां मिलन असी उस दौरान जाइए, ये ना होवे कि चार चार पाँच पाँच घंटे असी जाम दे विच स्टक होए रहिए ते अपना टाइम अपनी एनर्जी वेस्ट करिए। सो पहले असी इहदे ते रिसर्च वर्क करके जाना है कि किहड़े आर्स दे विच किहड़े टाइम दे दौरान जाइए कि सानू सड़कां भी वेलियां मिल जाण ते असी टाइमली पहुँच के अपना इंजॉय कर पाइए। और रूट चैक करन दे नाल नाल एक बारी वैदर चैक करना भी जरूर याद रखियो, क्योंकि बेशक गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो कई बार विच विच पानी दे छरटे भी आ जाते हैं, यस मीह भी आ जाता है। सो अपनी प्लानिंग करके चलनी है कि सानू छाता चाहिए है, रेनकोट चाहिए है, या जो भी तुसी नाल कैरी करना चाहते हो। एक बारी वैदर अपडेट भी जरूर देखना, एक बारी रूट चैकअप कर लेना, और कोशिश करो लेयर्स दे विच कपड़े पाओ। लेयर्स दे विच मतलब जेकर तुसी नीचे पतली जी टी शर्ट पाई है तो उपर तुसी कॉटन की बास्केट या कुछ इदा का स्टॉल वगैरह कैरी कर सकते हो, ताकि जेकर सानू ठंड लगे तो असी सैकेंड लेयर यूज़ कर लीए, नहीं तो फर्स्ट लेयर साढ़े को पाई होंगी है। सो इदा के छोटे छोटे ट्रिक्स ने जेडे ये साड़ी वोकेशनस का जोड़ा मज़ा है उन्होंने दुगना कर देंगे। सो थोड़ी जी प्री प्लैनिंग करके चलना है, तो मेरी प्री प्लैनिंग कह रही है कि हूँ अगला गीत भी लगा दो। सो मैं थोड़े लिए लगा लगी हाँ जी श्रेया घोषाल की प्यारी जी मिठी जी सुरीली जी आवाज़ के प्यारा जहा गीत कि सुना दें

अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, पर नहीं नहीं दोस्तों, आपा जमाना नहीं छड़ना। असी तो जिंदगी नू बहुत सोहने तरीके नाल सलीके दे नाल जीना है। अगर तुम मिल जाओ तो जिंदगी नू सोहने तरीके नाल जीवांगे। ते दोस्तों प्रोग्राम नू अगे बताइए।

एंजॉय करो जी 102.7 एफएम रेनबो ते दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है जी पंजाबी तड़का ते पंजाबी तड़का दे विच तड़का लगाओगे तुसी जी अपनी फोन कॉल्स दे जरिए सो दोस्तों जिवें कि तुसी जानदे ही हो कि पंजाबी तड़का प्रोग्राम दे विच तुसी करनियां हुंदियां कॉल्स ते असी गलबात करांगे तुहाडे नाल ते तुहाडी फरमाइश ते गीत भी प्ले कीते जाणगे सो जेकर तुसी भी चाहते हो कोई साढ़े नाल किस्सा कहानी कोई गलबात शेयर करना सांझी करना साढ़े नाल या साढ़े जरिए लिसनर्स दे नाल तां फिर देर नहीं करो जी नंबर डायल करो 0181 243 174 ए नंबर डायल करके तुसी साढ़े नाल राबता कायम कर सकते हो गलबात कर सकते हो ते अपनी सिफारिश दा गीत भी सुन सकते हो ते लो जी प्रोग्राम नू असी शुरू करन जा रहे हाँ पहला गीत मैं लगावांगी अपनी पसंद दा ते अगला गीत होएगा जी तुहाडी पसंद दा सो फटाफट उठा लो फोन ते डायल करना शुरू कर दियो जी 2342 174 ते प्रोग्राम दे विच पहला गीत मैं तुहाडे लई प्ले करन जा रही हाँ लो जी एंजॉय करो

0: एंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम पंजाबी तड़का 102.7 एफएम रेनबो ते। अगले कॉलर भी पहुंच चुके हैं साढ़े तक। हेलो
1: हेलो सस्तिका मैम।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैम सोनू बोल रहे हैं जी, पिंड कुका तलवंडी डिस्ट्रिक्ट कपूरथला तो। मैम
0: सोनू जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच। बिलकुल जो ज्यादा गर्मी हो जाती है परमात्मा अपने आप ही बैलेंस कर दिंदा है ना सब कुछ। हां बिलकुल। चलो ये तो जो मौसम सुहावना हो आरजी तौर पर है, गर्मी फिर बदनी है अजे। तो मैं ये दसो कि गर्मियों के केड़ी चीज तुहाडी फेवरेट है, केड़ी चीज सब तो
1: ज्यादा? वैसे गूंद कतीरा ते लस्सी ते नींबू पानी मैडम, तीन चीजा जी।
0: अच्छा रूटीन च कदी कदी जो गर्मी लगे बस उदो ही?
1: हाँ जी हाँ जी मैडम, तकरीबन ज्यादा गर्मी होवे ना फिर लस्सी
0: चीट करन नू दिल नहीं कीता। चलो बहुत वधिया हैबिट है जी, जेकर तुसी रूटीन दे विच शिकंजमी पींदे हो लस्सी पींदे हो ते फिर साडी बॉडी हाइड्रेट रहेगी ते गर्मी दीआं जिहड़ीआं मुश्किलां ने उहनां तों सानूं निजात हासिल हुंदी रहेगी, है ना? बहुत ही वधिया है। ते मैनूं तुसी दसो कि गीत तुहाडे लई किहड़ा प्ले करीए?
1: गीत मैडम बब्बू मान दी आवाज च सुना दिओ, टच वुड मैम।
0: टच वुड, ठीक है। इही गाणा क्यों
1: मैडम? बहुत प्यारा गीत है।

0: छुट्टियां?
1: मंडे नो।
0: मंडे, वेरी गुड। आज तो छुट्टी है?
1: हाँ जी।
0: ओके, तो फिर की कर रहे हो छुट्टी ची? रेडियो सुन रहे हो?
1: हाँ जी।
0: ओके, आज फिर मनसीरत ने की खाता है सवेर दा? आज छुट्टी सी, कुछ स्पेशल खाया कि नहीं?
1: नहीं।
0: ओहो, फिर की फायदा छुट्टी दा, है ना? पापा नु को किते लेके चलो, घुमा के लियाओ, कुछ खिला के लियाओ, है ना? हेलो,
1: सुनदे पे पापा?
0: पापा सुनदे पे है ना? हुन मैं कह देता, हुन लेके जानगे कमान ली। ते जड़ी जड़ी चीज तुसी खानी है ना, जड़ी चीज लेनी है, ओदी लिस्ट बना लो लंबी जी, ठीक है? फिर तुसी कहना कि ते रेडियो वाले ने क्या सी, मैनू तां खिला के लियाओ, ठीक है? चलो, ते फिर आज गाना केड़ा सुनना मनसीरत ने?
1: कनक दी राखी।
0: रब्बा, कनक दी राखी, तेनू पता कनक की हुंदी है? सच्ची की हुंदी कनक? है आटा बंदा है, जेड़े आटे दी रोज मनसीरत रोटी खांदी है ना? ठीक है, फिर मैं गाना लगा दा कि होर गल करनी है?
1: लगा दो।
0: लगा दा, चलो, ओके, बाय
1: बाय।
0: लो जी, प्यारी जी साड़ी लिसनर ने फोन किया है, ते पिछो पापा होली होली बोल दे पे सी, है ना? ते गाना कहंदे सुनना है तेरी कनक दी राखी, ते जरूर प्ले करांगे जी ये गीत। ते दोस्तों, अजे भी टाइम हैगा, लास्ट कॉल लग सकती है, सो तुसी भी फटाफट अपने फोन चुको, ते नंबर डायल कर दियो जी 01 से 81 23 42 174। तद तक मैं छोटे जे बच्चे दी फरमाइश पूरी कर दियां।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमी दिल्ली विच 51वीं प्रगति मीटिंग दी प्रधानगी कीती। करीब 30,000 करोड़ रुपए दी लागत वाले 7 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे दे प्रोजेक्टां दी समीक्षा कीती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों नूं कौमांतरी सरहदां दे 15 किलोमीटर दे अंदर सारे गैर कानूनी ढांचे टाउण लई कहा। सर्वोच्च अदालत दे कालजियम ने 4 हाई कोर्टां दे मुख जजां अते सीनियर वकील वी मोना नूं सुप्रीम कोर्ट दे जजां वजों तरक्की देण दी सिफारिश कीती। केंद्रीय सेकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड ने हैदराबाद स्थित कंपनी को एम्ट एजुटेक नूं प्रीख्या मुलांकन दा ठेका देण संबंधी इल्जामां नूं रद्द कीता है। संघ लोक सेवा कमिशन ने पहली बार सिविल सेवावां मुढली प्रीख्या 2026 लई आरजी उत्तर कुंजी जारी कीती। उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक अपने इतराज जमा करवा सकते ने। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने लुधियाना विखे तैनात सहायक सब इंस्पैक्टर नूं 14,000 रुपए रिश्वत लैंदिआं रंगे हत्थीं काबू कीता। मौसम विभाग ने अज तों पंजाब ते हरियाणा च कई थावां ते गरज चमक नाल मींह दी पेशीनगोई कीती। देश दे वख-वख हिस्सां विच अज ईद उल अज

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है जी, होम स्वीट होम, तुहाड़ी दोस्त आरजे निवेदिता दे नाल। वेल दोस्तों प्रोग्राम होम स्वीट होम असी गल्लां करांगे बहुत सारियां, तुहाड़ी सेहत दियां, तुहाड़े घर परिवार दियां, तुहाड़े समाज दियां सारियां गल्लां करांगे कि किवें अपने आप नूं असी सेहतयाब रखना है, किवें अपने घर नूं सोहणा खुशहाल बना के रखना है, किवें अपना आला दुआला साफ रखना है। बहुत सारियां ढेर सारियां गल्लां पता लै के मैं हाजिर हो गई हाँ जी प्रोग्राम दे विच। सो तुसीं वी बने रहना है इसे तरह मेरे नाल, ते हर टिप हर ट्रिक नूं तुसीं याद नहीं रख सकते, ते जेकर तुसीं इसनूं नोट करना चाहते हो तो कापी पेन फटाफट चुक लियाओ, नोट कर लो, क्योंकि जो गल निकल गई वो दोबारा नहीं आएगी। सो जेकर तुसीं लिखना चाहते हो या नोट करना चाहते हो तो कॉपी पेन चुक लियो। मैं प्रोग्राम की शुरुआत कर जा रही हाँ जी, पहला गीत मैं प्ले कर दी तो उस तो बाद फिर जानकारियां का सिलसिला है जोड़ा वो शुरू करांगे। तद तक मैं जानकारियां वाली जी मेरी पोटली है ना उन्होंने मैं खोल लवा, तुसीं इंजॉय करो ए गीत, ते कुछ ही पलों के बाद फिर मिलते हैं।

एंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम होम स्वीट होम। ते दोस्तों आ गई है मेरी भी बारी। वेल होम स्वीट होम दोस्तों मैनू ये दसो कि घर दे विच सब तो इंपॉर्टेंट कोना केड़ा हुंदा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही पहचान रहे हो जी, किचन। जेकर किचन साड़ी बिल्कुल साफ सुथरी और किचन दे विच वन सुवन्ने खाने बनते होन ते फिर सारा घर सानू वधिया लगन लग जांदा। सो छुट्टी का दिन होवे ते खाणियां दी गल ना होवे ते मज़ा जिहा नहीं आता। सो दोस्तों असी गल करांगे कि खाना असी बेशक वधिया बनाते होइए सोहना स्वाद बनाते होइए पर जद तक उनू परोसण दा सलीका नहीं है ना ते फिर वो चंगा नहीं लगता। कहंदे ने ना कि पेट दे खान तो पहला मुँह दे खान तो पहला तो अखां खांदियां ने, है ना। जिहड़ी चीज़ अखां नू सोहनी लगती है तो वह फिर सानू स्वाद भी लगती है। सो सब तो पहली गल कि किवें असी प्लेट सजाउणी है। घर विच कोई किटी पार्टी है जा छोटा जा कोई फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, घर विच गैसट आए होन ते असी बहुत सारियां चीज़ां बनाईयां होंदियां ने और बहुत सारियां चीज़ां जदों प्लेट विच पाउने आ ते ओह की काला माला हो जांदा है और किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आउंदा। सो प्लेट नू किवें असी व्यवस्थित रखना है, प्लेट नू किवें डेकोरेट करना है, उहदे बारे असी गलबात करांगे। सो दोस्तों करना की है जी, प्लेट नू असी चार हिस्सियां च डिवाइड करना है। लाइना नहीं मारनियाँ, उदा ही असी हिस्से डिवाइड कर लेने। एक तरफ असी रखांगे सुक्कियां चीज़ां। सुक्कियां चीज़ां कितना जिमें भुजिया है, टिक्की है, कटलेट है, नमकीन है, यहो जे जड़े सुक्के स्नैक्स है वह असी एक किनारे ते रखांगे ताकि उन्हां दा कुरकुरापन है जड़ा वह बनिया रहे। तो दूजी तरफ ओपोजिट साइड ते असी रखांगे दही या ग्रेवी वाली चीज़ां। इनू असी बोल च पा के रखिए तो ज़्यादा वधिया, जिमें दही बड़े हो गए, चाट है या होर भी जड़ी गिली चीज़ है वह बोल दे विच पा के उन्हूं दूसरी साइड रखना। ते तीसरे हिस्से विच असी छोटा जिहा रखना जी तीसरा हिस्सा, इहदे विच चटनी जां डिप जिवें हरी चटनी है, सॉस है, मिठी चटनी है, जिहड़ी कि बहुत घट जगह दे विच आ जांदी है, छोटी जी मात्रा दे विच असी कोने जे दे विच रखनी है। जे चाहिए तो छोटी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो तीन हिस्सों की असी गल कर ली जी, एक पासे असी रखनी है सुक्कियां चीज़ां, दूजे पासे असी रखनी है ग्रेवी वाली चीज़ां, तो तीसरी साइड पर असी रखनी चटनी जां डिप छोटी बोल च पा के जां प्लेट च, उदा भी रखनी है तो रख सकते हो। तो जिहड़ी चौथी साइड है उत्थे असी रखना मिठा, मिठाई अलग या अलग तो सर्व करो जिन्हें

प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी, होम स्वीट होम ते होम स्वीट होम दे विच। दोस्तों हुन गल करदे आ कि असी घर दे विच ही रोज दा शरबत किवें बना सकदे आ। मैनूं पता है कि गर्मियां

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: इंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम होम स्वीट होम ते होम स्वीट होम दे विच मैं आ गई है जी वापस। लो दोस्तों हुन गल करदे हां कि एनर्जी लेवल अपना किवें अप रखना है, क्योंकि थोड़ी जी सुस्ती पै जांदी है गर्मियां दे विच ते दिल करदा है बस एसी पखा चलाइए ते कमरे दे विच बैठे रहिए, बाहर निकलिए ना। अपने एनर्जी नूं किवें असीं थोड़ा जिहा लेवल अप करके रखना है ताकि सारा दिन साडा जिहड़ा शरीर है चुस्त ते फुर्तीला बनिया रहे।

0: घर खर्चे दे पैसे दियो हस्बैंड जी।
1: ए राशन दे 15,000, सब्जियां दे 2,000
0: ते बिजली दे बिल दे।
1: हुन 0 रुपए किवें दवा?
0: ओहो भुली गई सी, हुन ता सोलर पैनल लग गए है ना, ता फिर जो बाकी बचे हुए 4,000 ने उसदी शॉपिंग करन चलिए।
1: जरूर, पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: सर तुसी पर्सनल लोन लेना?
4: फिर तो यार इनू तो ब्लॉक ही कर देना।
3: सर दुबई दी फ्री ट्रिप।
4: इनू भी ब्लॉक, किन्नेयां नू ब्लॉक करी जावां यार।
5: सिर्फ फोन ते ब्लॉक करना स्पैम खत्म नहीं हुंदा, हर बार नवा नंबर आ जांदा है।
4: तां फिर की करां?
5: कॉल पिक कर, फिर ट्राई डीएनडी ऐप ते रिपोर्ट कर, कैटेगरी सिलेक्ट करो, बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस ते सबमिट करो, बस कुछ सेकंड्स दा काम है।
4: मतलब सब दा स्पैम कट जावेगा?
5: हां, रिपोर्ट मिलदे ही एक्शन हुंदा है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करो। ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर तो, ते रिपोर्ट करना शुरू करो।
6: मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत दी जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात। ऐतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालो नाल। नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज़, डीडी भारती, डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा। प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर, एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ अमृतसर, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़, आकाशवाणी बठिंडा, आकाशवाणी पटियाला, विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात दी 134वीं कड़ी।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2000

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है मीठे मेलोडीज। तुहाडे मिड्डे नूं मेलोडियस बनान, स्वीट बनान, सुरीला बनान दे लई मैं हाजिर हाँ निवेदिता। दोस्तों अज मैं तुहाडे लई लैके आई हाँ एक अजिही आवाज जिसकी मिठास ने 70-80 दे दहाके विच दिल नूं तड़कना सिखाया सी। जी असी गल करांगे जी हेमलता जी दी। बॉलीवुड की बेहद सुरीली गायिका हेमलता जी नूं समर्पित अज असी प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। दोस्तों हेमलता जी की आवाज़ दे विच ओ सादगी है जो सीधी रूह नूं छूंदी है, तो फिर देर किस गल दी। चलो सफर की शुरुआत करते हैं फिल्म चित चोर दे इस बेहद खूबसूरत रोमांटिक गीत दे नाल।

0: या news@aar.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है मिडडे मेलोडीज। दोस्तों मिडडे मेलोडीज दे विच अज असी गल कर रहे हैं सुरीली अदाकारा हेमलता जी दी। तो दोस्तों प्रोग्राम दे माहौल नू थोड़ा जा बदलते हैं ते प्यार विच एक पेंडू सुगंध होंदी है जो देसीपन होंदा है उसका आनंद लैंदे हैं। दोस्तों फिल्म सी नदिया के पार जिसके गीत अज भी हर विआह शादी या खुशी के मौके पर गूंजते हैं, पर इस फिल्म में एक बहुत ही मासूम ते प्यारा जिहा रोमांटिक गीत सी जिथे रस्ता भुलण के बहाने प्यार दीआं गल्लां हुंदीआं ने। जसपाल सिंह जी ते हेमलता जी की आवाज़ दे विच ए गीत सुनदे आ ते आओ वापस चलदे आ वो पुरानियां यादां दे विच कौन दिशा में लेके चला रे बहुरिया।

0: मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत दी जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज अते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 134वीं कड़ी
1: ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ
2: ਇੱਕ ਵੱਜ ਕੇ 50 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਰਦੂ ਚ
3: ਨਮਸਕਾਰ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ

सब कुछ मिलता है इस दुनिया में, सब कुछ मिलता है इस दुनिया में फराज, बस वो नहीं मिलता जिससे मोहब्बत हो। जिंदगी कम पड़ गई वरना वो ना मिलता मजाल उसकी। ना कर नसीब पे इतने गिले इकबाल, जब खुदा राजी होता है तो हर चीज मिल जाती है। तुम भी गालिब कमाल करते हो, उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायत खुदा से करते हो। फराज इकबाल ते साडे जेड़े ने गालिब साहब ने किन्नी खूब यह शायरी लिखी है, है ना। तो इस तरीके दे नाल साडे दोस्तों ने भी साडे तक शायरियां पहुँचाइया ने, ते एक दोस्त ने बहुत ही सोहनी लिख के भेजी है, मैं तुहाडे नाल सांझी कर रही हाँ। एक कहानी हमारी भी थी जो शुरू तो बहुत खूबसूरत हुई थी, जहाँ हर बात में अपनापन था, हर पल में खुशी थी और हर ख्वाब में बस एक ही चेहरा था। और उस वक्त लगता था कि ये कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी। हमने उस रिश्ते को दिल से जिया, हमने उस रिश्ते को दिल से जिया था, हर छोटी छोटी चीज में उसे महसूस किया था, उसकी हंसी में अपनी खुशी ढूंढ ली थी, उसकी हंसी में अपनी खुशी ढूंढ ली थी और उसकी हर बात को अपनी आदत बना लिया था। बहुत खूब जी, ते ये सानू भेजी है मोहम्मद मुजफ्फर मोहम्मद अरमान जी ने, बहुत शुक्रिया जी। तुसी फिर तो भेजी है, बट हाँ बहुत सोनी है। अगली साड़ी को लाइए जी परमजीत गोपाल नगर जलंधर, तो इन्होंने सानू लिखिया है, हे मित्र रास्ता लंबा लंबा हो या कठिन, हिम्मत का दीपक बुझने मत देना, कदम छोटे हो तो भी चलना जारी रखो, क्योंकि रुक जाना हार है और निरंतर बढ़ते रहना ही सच्ची जीत है। ये जी

मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत दी जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालो नाल नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज

FM 100.6 MHz विविध भारती, FM 103.6 MHz अमृतसर, FM 100.9 MHz अते FM 100.8 MHz आकाशवाणी बठिंडा, आकाशवाणी पटियाला, विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात दी 134वीं कड़ी।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

चलो फिर बांट लेते हैं अपनी सजाएं, नहीं चलो वंड लैने हैं फिर अपनियां खुशियां, वंड लैने हैं अपने जिहड़े थॉट्स ने, अपने जज्बात ने प्रोग्राम दे अज शायर दे विच। यानी कि तुसी बहुत सारे जज्बात अज साडे नाल सांझे कीते, हुण 5 तों 6 मिनट साडे कोल रह गए आ। साडे कोल शायरी आई है जी, ओ उन्होंने शायरी भेजी सी लेकिन मैनूं लगता है कोई गड़बड़ सी तां उन्होंने डिलीट कर दी, पर कोई गल नहीं जी। फिर साडे दोस्त ने एक होर शायरी भेजी है, वो पढ़ लैंदे हाँ, जिहड़ी कि हैगी है खूबसूरत जई। मिर्ज़ा गालिब कहंदे ने, की कहंदे ने सुनोगे? जाहिब कहंदे ने, मिर्ज़ा गालिब खूबसूरत लाइना दे विच, गालिब शराब पीने से गालिब शराब पीने से दुख दूर नहीं होते, दुख दूर करने के लिए दोस्तों का साथ चाहिए होता है। जो कभी छोड़ के ना जाए ऐसा हाथ चाहिए होता है। पर यह जो साथ मिलना आजकल मुश्किल बहुत है। लेकिन हर किसी की जिंदगी दे विच इहो जिहा साथ हुंदा जरूर है। तुसी अपने आले दुआले देखोगे, अपने दोस्तों नूं वेखोगे, तुहानूं इक अद्धा इहो जिहा दोस्त जरूर मिल जाएगा जिहड़ा हमेशा तुहाडे नाल खड़ा रहेगा, हमेशा तुहाडे दिल दे जज्बात नूं पहला ही समझ जाएगा कि तुसी कहना की चाहते हो, कि तुहाडे चेहरे ते सारे जिहड़े एक्सप्रेशन ने, तुसी उदास हो, रोण वाली हालत होई है, या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो। लोकी नॉर्मल नहीं पुछेंगे लेकिन तुहाडा वो दोस्त जिहड़ा है वो जरूर पुछेगा।

अगर सफ़र था और पीछे हम सफ़र था, अगर सफ़र था और पीछे हम सफ़र था, रुकते तो सफ़र छूट जाता और चलते तो हम सफ़र छूट जाता। ये खूबसूरत जियां लाइना जेड़िया ने राहत इंदौरी जी ने लिखी है, तो बहुत ही खूब लिखा है कि सही गल कही है कि सफ़र और हम सफ़र दोवें बहुत ज़्यादा जरूरी ने, तो दोहां दे विच बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तुसीं इदां नहीं कर सकते अपने हम सफ़र दे पिछे अपना सफ़र छड्ड दो ते सफ़र दे पिछे हम सफ़र, नहीं, दोहां नूं नाल लै के चलना है। तो चलो जी, हुण चलन दी वारी मेरी भी आ गई है, तो एक खूबसूरत जी असी गज़ल सुनते हाँ, उस तो बाद तुसीं प्रोग्राम इंजॉय करोगे रेडियो डॉक्टर, फिर उस तो बाद प्रोग्राम आएगा संदेश टू सोल्जर।

0: बेहतरीन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा। आज कार्यक्रम में हमारा विषय है प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस, यानी मौखिक और दंत समस्याओं से कैसे बचाव करें। और इस खास विषय पर हमारे साथ हैं डॉक्टर हरमीत सिंह, जो हैं डेंटल स्टाफ सर्जन डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: थैंक यू जी, थैंक यू।
1: श्रोताओं, ओरल हेल्थ हमारे पूर्ण स्वास्थ्य का आईना होती है। अगर मौखिक स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो संपूर्ण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है, खासकर हमारे पाचन तंत्र पर। डॉक्टर साहब, अगर हम दांतों और मौखिक स्वच्छता की बात करें तो ये कितना जरूरी है हमारी सेहत के लिए? दांत और मुंह में परेशानी आने के कारण क्या है, क्यों ये खराब होते हैं दांत?
2: देखिए, ओरल कैविटी जो मुख है, इसको पहले इट इज अ मिरर इमेज ऑफ जनरल हेल्थ ऑफ द बॉडी, मींस पूरे जनरल हेल्थ का स्टेटस जो है ओरल कैविटी से पता चल जाता है। ठीक है, अगर उसके जनरल कंडीशन, पेशेंट की डेंटल कंडीशन की

0: पुअर है कि उसमें दांतों में कैविटीज हो रही हैं, उसके मसूड़े खराब हैं, उसमें पायरिया लग रहा है और यहाँ उसके मुंह के अंदर सफ़ेद निशान या कैंडिडाइसिस जिसको बोलते हैं वो हो जाता है, या उसके कोई इम्पैक्टेड टीथ हैं उसकी वजह से स्वेलिंग है, या पेशेंट कोई आर्टिफिशियल डेंचर्स पहनते हैं
1: जी.
0: तो उसको कैसे मेंटेन करना है, ये सब हम आज इस प्रोग्राम में हम जानेंगे. इसके अलावा टीएमजे की प्रॉब्लम्स हैं जो जो जॉ का ज्वाइंट होता है या बड़ा जो हिलता है ज्वाइंट, तो उससे रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल पब्लिक में और उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. और मुँह में काफ़ी अल्सर्स हो जाते हैं, कई बार वो सिस्टेमिक डिसीजेज जो बॉडी की जनरल डिसीजेज हैं उससे रिलेटेड हैं, कई बार फीवर के साथ अल्सर्स आ जाते हैं और कैंसर तक का रूप ले लेते हैं. तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इस शो में.
1: जी, तो सुना श्रोताओं आपने, आज हम डिस्कस करेंगे दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की और मुंह में होने वाली परेशानियों की. डॉक्टर साहब इस खास विषय पर बहुत सी जानकारी आपसे लेंगे. पहले सुन लेते हैं ये गीत.

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कैविटी की। अगर बात कैविटी की करें तो कौन सी लापरवाही है जिसकी वजह से दांतों में कैविटी की समस्या हो जाती है?
1: देखो, डेंटल कैविटीज जो है बहुत ज्यादा सभी दांतों में, ऑलमोस्ट जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं सब में कैविटीज होती हैं। और जो इसका प्रमुख कारण है वो है कि हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं करना। जैसे कि हम हमेशा पब्लिक में और पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि ब्रश जो है ट्वाइस डेली करना चाहिए, 2 मिनट के लिए करना चाहिए।

0: और कौन सी टूथपेस्ट के साथ करना चाहिए ये भी बताते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट रिकमेंडेड है, जो कि एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री है, उसमें हम हमेशा रिकमेंड करते हैं फ्लोराइड होना चाहिए, बिकॉज फ्लोराइड है वो कैविटीज को प्रिवेंट करता है, कि कैविटी को रोकता है। नॉर्मली जो हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है वो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट एनेमल, ओके, बट एनेमल में भी केरीज हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो फ्लोराइड है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट को फ्लोरो एपेटाइट में कन्वर्ट करता है, विच इज स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल हाइड्रोक्सी एपेटाइट। सो हमें हमेशा फ्लोराइड टूथपेस्ट ही यूज करना चाहिए। उसकी क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए, किस एज ग्रुप में, वो सब मैं आपको साथ साथ इस प्रोग्राम में बताते रहूंगा।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, इसी बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, ले लेते हैं उनका कॉल।
0: जरूर।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी।
2: हाँ, सबसे पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को नमस्कार।
1: जी नमस्कार आपको भी।
0: नमस्कार।
2: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही अर्ज कर रहा हूँ।
1: जी।
2: तो मेरे चार छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि कई शख्स कहते हैं हमारे मुंह में 32 दांत हैं, कई कहते हैं 28 हैं, क्योंकि मेरे मुंह में स्वयं 28 दांत हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि ये मतलब मदर फादर की वजह से ही ऐसा होता है या फिर हमारा कोई कुदरतन मतलब ऐसी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है। पहला सवाल मेरा ये।
1: जी।
2: दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो अक्कल दांत होती है, जो अक्कल दांत जिसे कहते हैं,
1: जी जी,
2: अगर अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसका हमें घरेलू स्तर पर क्या करना चाहिए उपाय। तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे हम खाना खाने से पहले भी हाथ धोते हैं और खाना खाने के बाद भी हाथ धोते, और ऐसा ही अगर हम जो है दांत साफ करते वक्त ऐसा करें तो कोई हर्ज तो नहीं। और चौथा और आखिरी सवाल वो ये है कि हम कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, किसी भी पेस्ट को इस्तेमाल कर ले, किसी भी ब्रश को, न जाने होता क्योंकि 15 मिनट के बाद आधे घंटे के बाद मुझे तो सहमलानी फिर शुरू हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले चिगम का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे चारों सवाल है, प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: जी डॉक्टर साहब, इनके सवाल आपने सुन लिए,
0: तीन चार सवाल हैं इनके। तो सबसे पहला सवाल तो इनका ये था कि इनके 28 दांत है और इनके 32 क्यों नहीं है। तो इसका रीजन ये है कि पहले जो इंसान था, मतलब सेंचुरीज काफी सालों से पहले, तो उस टाइम जो है रॉ फूड खाता था, फ्रूट तोड़ा और वो खा लिया, पका के या सॉफ्ट फूड नहीं खाता, तो उस टाइम पे 32 दांतों की इंसान को जरूरत होती थी। तो जैसे जैसे इंसान की डेवलपमेंट हुई, सॉफ्ट फूड पे आया, तो ऐसे ऐसे 32 जॉ का साइज जो है श्रिंक होता जा रहा है, तो उसकी वजह से जो 32 दांत होते थे, जो लास्ट के मोलर है, विजडम टीथ जिसको कहा जाता है, वो अब या तो इरप्ट ही नहीं होते हैं, या इरप्ट होते हैं तो टेढ़ी मेढ़े डायरेक्शन में होते हैं, तो वो फिर फर्दर प्रॉब्लम करते हैं। तो इसलिए चिंता की बात नहीं, अगर आपके 28 दांत हैं तो वो भी नॉर्मल ही है, तो आपको कोई आर्टिफिशियल लगवाने की जरूरत नहीं है। सेकंड ये है कि अगर इम्पैक्टेड टीथ हैं, जो कि विजडम टीथ जिसे कहते हैं, अगर वो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो फिर आप उसका चेकअप कराइए आपके नियरेस्ट डेंटल सेंटर पे। अगर वो कोई पैथोलॉजी उसके साथ एसोसिएटेड है, या वो अगर टेढ़ा है और वो साथ वाले दांत को डैमेज कर रहा है, तो फिर उसका एक्सरे करा करके उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। या कई बार क्या होता है, जो इम्पैक्टेड टूथ है, जो अभी निकला ही नहीं है, उसके ऊपर गम की कवरेज होती है, तो वो बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन करती रहती है, उसको सोर थ्रोट भी होता है, कई बार उनको फीवर भी हो जाता है रिकरेंट उसकी वजह से, तो आपका चेकअप होना चाहिए, एक्सरे होना चाहिए। अगर उसके साथ टूथ बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको सर्जिकली हम रिमूव करते हैं। अगर कोई टूथ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ कोई पैथोलॉजी एसोसिएटेड है, कई बार इम्पैक्टेड टीथ के साथ सिस्ट, रसोली या कोई ट्यूमर भी एसोसिएट हो जाता है, तो इसका रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए एवरी 3 ईयर 5 ईयर। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक एक्सरे जरूर होना चाहिए, कहीं उसके साथ कोई पैथोलॉजी तो एसोसिएटेड नहीं है। तो इस तरह से हम इम्पैक्टेड टीथ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
1: जी जी। तो सुना श्रोताओं आपने कि जो दांत है हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपना जो हम स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना है वो इन्हीं से चबाते हैं और हमारे पेट तक जाता है, और इनकी खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए। और इसी पर आज हम बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस की। इससे अगर आपको भी है कोई आपके मन में सवाल या जानना चाहते हैं कोई बात, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ना। डॉक्टर हरमीत सिंह है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, हम कैविटी की बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि कैविटी की समस्या क्यों होती है, इसका कैसे पता चले कि किसी को कि उसको कैविटी हो गई है, और इसका निदान क्या है?
0: देखिए, कैविटीज की जो नॉर्मली समझा जाता है कि कैविटीज जो है ब्लैक कलर की, जिसमें होल हो जाता है, वो कैविटीज हो गई हैं, ठीक है। बट ये स्टार्ट होता है एज अ डेंटल केरीज, जो कि एक वाइट स्पॉट लीजन की तरह स्टार्ट होता है। ये लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है इस चीज के बारे में कि वाइट स्पॉट लीजन

0: जो होते हैं डेटर डेटर एक्चुअली डेंटल केरीज जो इनिशियल स्टेज में है, जो कि प्रिवेंट कर सकते हैं उसको कैविटीज में प्रोग्रेस होने में, तो वो बहुत अच्छी स्टेज है उसको प्रिवेंट करने की। हम उसको फ्लोराइड टूथपेस्ट एडवाइस करते हैं और उनको फ्लोराइड जेल टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए देते हैं और फ्लोराइड वार्निश अप्लाई करते हैं क्लिनिक में, तो उससे जो है हम डेंटल कैविटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कई बार हमने सुना होगा और देखा होगा, अपने साथ भी होता है कि जब हमें दांत में दर्द होता है तो हमें लगता है कि इसकी क्या वजह है, कि कोई कैविटी हो गई है या ये जो दर्द है वो नॉर्मल है, तो कैसे पता करें कि ये दांत का जो दर्द है वो नॉर्मल है या कैविटी है उसमें?
0: नहीं, देखिए उसके लिए आपको एक दंत चिकित्सक के पास, डेंटिस्ट के पास ही जाना होगा। वो क्लिनिकली चेक करेंगे कि दांत कि में कैविटी है या कोई उसके साथ गम्स की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या कई बार कुछ लोगों को न्यूरेल्जिया जैसी पेन होती है, करंट की तरह लगता है, तो उसमें दांत की कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी दांत में पेन होती है। कई बार टूथ जो है क्रैक हो जाता है जो कि विजिबल नहीं होता क्लिनिकली और रेडियोग्राफिकली भी, एक्सरे में भी नहीं दिखता है, तो उसको जो है क्रैक टूथ सिंड्रोम जैसे कि हम कहते हैं, तो वो डेंटिस्ट के पास जाकर ही आप अपना डायग्नोसिस करा सकते हैं और ट्रीटमेंट करा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, हम आगे बात करेंगे। एक श्रोता जुड़ गए हमारे साथ कॉल लाइन पर। हेलो।
2: हेलो
1: जी।
2: हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब मेरी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मेरी एज 48 है।
0: हाँ जी। और
1: आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम कुंवर सिंह है
1: जी।
2: तो मेरे ये टीथ में गैप आ रहे हैं, तो उसका क्या इलाज है? नीचे वाले दो जो फ्रंट के टीथ में ज्यादा गैप आ रहा है
1: जी,
2: तो उसका सोल्यूशन क्या है? इस एज में क्या किया जा सकता है ये, और धीरे धीरे वाइडन होते जा रहे हैं।
0: देखिए जैसे कि आपने एज अपना 48 बताया है, तो जनरली इस एज में गैप होना का कारण ये हो सकता है कि आपके टीथ जो हैं वो वीक हो रहे हैं, मीन्स उसके गम्स जो हैं जो इसको होल्ड करके रख रहे हैं वो गम्स वीक हो गए हैं, तो हो सकता है कि उसमें बोन रिजॉर्प्शन हो गया हो। बोन जो है दांतों को छोड़ के नीचे चले जाने की वजह से टीथ का फ्लेयरिंग हो जाता है, तो गैप हो सकता है उसकी वजह, तो आपको एक डेंटल सर्जन से चेकअप कराना चाहिए, तो जो भी उसका कारण है उस कारण को दूर करके उसका सलूशन किया जा सकता है।
1: जी, उम्मीद है कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कैविटी की, अब हम बात करते हैं पायरिया की। ये किस तरह की बीमारी है, इसके क्या लक्षण है और बचाव कैसे करें इससे?
0: देखिए पायरिया एक जनरल टर्म है जो कि साइंटिफिकली हम उसको जिंजिवाइटिस या पेरिडोनटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से होता है कि जब कोई पर्सन जो है ठीक से ब्रश नहीं करता है और उसका प्लाक जो है डिपॉजिट रह जाता है दांतों के ऊपर, तो उसकी वजह से जो प्लाक है वो इरिटेट करता है, बैक्टीरिया उसमें ग्रो करते हैं तो वो इरिटेट करते हैं गम्स को, मसूड़ों को, तो उसकी वजह से तो बॉडी का रिएक्शन होता है, तो गम्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जैसे ही पेशेंट ब्रश करता है तो उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, और होता यह है कि पेशेंट ये समझता है कि ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्रश करना छोड़ देता है, वो उंगली से क्लीन करना शुरू कर देता, तो होना ऐसा नहीं चाहिए। अगर आपका प्लाक डिपॉजिट है मसूड़ों के आसपास तो ब्रश रेगुलर करते रहना चाहिए, सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए, और इसके अलावा अगर फिर भी अगर प्रॉपर केयर ना की जाए तो जिंजिवाइटिस फर्दर प्रोग्रेस हो जाती है पेरिडोनटाइटिस में। उसमें क्या होता है, गम्स के साथ साथ बोन भी जो है डाउन मूव करना शुरू कर देते हैं, रिजॉर्प्शन होना शुरू कर जाते हैं, तो उससे जो है पॉकेट्स बन जाती हैं गम्स में, पेरिडोनटल पॉकेट्स जिनको हम कहते हैं, और साथ साथ टीथ की मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, तो इन सबको टुगेदर हम बोलते हैं पायरिया हो गया है। तो उसके लिए प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक करनी चाहिए और डेंटल फ्लॉस करना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। हम सबको बोलते हैं ब्रश एंड फ्लॉस योर इफ यू वांट टू क्लीन द टीथ।
1: जी श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस, यानी मौखिक और दंत समस्याओं से कैसे बचाव करें, इस विषय पर। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आपकी सेहत से जुड़े कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज है हमारे साथ डॉक्टर हरमीत सिंह, जो हमें बता रहे हैं प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस जैसे खास विषय पर बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़े उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल।
2: हाँ जी जरूर।
1: हेलो।
3: हाँ जी नमस्कार, मैं सपना बात कर रही हूँ।
1: जी
3: सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे आप लोग प्रोग्राम्स करते हैं, हम सबको इतना बेनिफिट मिलता है।
1: जी धन्यवाद।
3: और दूसरा ये है कि मेरे दो पेशेंट हैं।
1: जी।
3: एक तो ये है कि मेरे पीछे वाले मोलार्स ऊपर और नीचे दोनों में ही कीड़ा लगा है।
1: जी।
3: काला काला।
1: जी।
3: जो बहुत ही क्लियरली ऑब्वियसली विजिबल है सभी को, मगर फिर भी डेंटिस्ट ने मुझे बोला कि जब तक वो आपको ट्रबल ना करें तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो मुझे पूछा था कि क्या उसको ऐसे छोड़ना सेफ है, कहीं वो इधर उधर और तो नहीं हो जाएगा
1: जी
3: इन्फेक्शन। नंबर टू, मेरी आरसीटी, एक डेंटिस्ट ने बोला कि मुझे आरसीटी कराना चाहिए, एक और मोलार है मेरा।
1: ओके।
3: उसमें बहुत ज्यादा मुझे पेन था और वो थोड़ा थोड़ा सा हिलने भी लगा है। एक ने बोला कि आप उसको निकलवा लीजिए और दूसरे ने बोला आप आरसीटी

0: के लिए ट्राई कर सकते हैं. तो मैंने RCT करवा लिया है उसका, मगर अभी भी खाने में मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं है. ऑल्दो पहले के जितना पेन तो उसमें नहीं है, मगर फिर भी वो उतना कंफर्टेबल भी नहीं है खाने में.
1: जी,
0: तो ये पूछा था कि उसका मतलब क्या, हमने ठीक किया उसमें RCT कराकर.
1: जी
2: देखिए, आपका पहला सवाल था कि आपके दांतों में काला काला कीड़ा लग गया है पीछे वाले दांतों में. देखिए, काला काला कीड़ा जो है वो कैविटीज ही है कि नहीं है, वो या वो सिर्फ एक स्टेन्स ही हैं. जो ब्लैक दिखता है वो जरूरी नहीं कि कैविटीज ही हैं. अगर उसमें होल है तो उसको हम कैविटीज बोलते हैं. हो सकता है वो कुछ स्टेन्स हो, एक्सट्रिंसिक स्टेन्स हो, जो आप ठीक से क्लीन नहीं कर पा रहे उसकी वजह से वो ब्लैक हो गए हैं. तो जरूरी नहीं कि वो कैविटीज ही हैं, तो आप एक चेकअप करा सकते हैं कि वो हैं कि नहीं है. तो और दूसरी चीज आपने बोला कि वो स्प्रेड ना हो जाए, कैविटीज जो है दूसरे दांतों में ना लगे. देखिए कि इन कैविटीज जो है, डेंटल कैविटीज, वो इन्फेक्शियस नहीं होती कि एक दांत से दूसरे दांत को लग गई, या एक साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड में कैविटी लग गई, या एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में कैविटीज का इन्फेक्शन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. डेंटल कैविटीज जो है प्लाक की वजह से होती है, जो प्लाक दांतों के आसपास डिपॉजिट हो जाता है. और जब आप मीठा साथ में खाते हैं तो जो बैक्टीरिया है प्लाक में वो शुगर को कन्वर्ट करते हैं एसिड में, और वो एसिड जो है टूथ को डिसॉल्व करता है, एनेमल को डिसॉल्व करता है, जिसकी वजह से उसमें कैविटीज हो जाते हैं. तो मेन है आपको प्लाक को कंट्रोल करना है प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से और डेंटल फ्लॉस करके. तो इस तरह से इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है डेंटल कैविटीज का. और दूसरा क्वेश्चन बताया कि आपका टूथ में पेन था, उसका रूट कैनाल हो गया है, तो आप जो है अपना चेकअप करवा करके RCT के बाद का एक्सरे करा करके देख लीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसकी कैपिंग, उसमें फुल कवरेज क्राउन उसके ऊपर लगवा सकते हैं.
1: जी डॉक्टर साहब, कैविटी काफ़ी लोगों में एक कॉमन प्रॉब्लम है, और इसकी क्या वजह है और कैसे बचाव कर सकते हैं इससे?
2: देखिए, डेंटल कैविटीज़ जो हैं काफ़ी टाइम से हैं लोगों में. ठीक है, तो हमारे जो हैं दो मॉडल होते हैं डेंटिस्ट्री में. एक होता है ऑपरेटिव मॉडल, जो कि मॉडर्न डेंटिस्ट्री, जो डॉक्टर जीवी ब्लैक ने सेंचुरीज एगो दिया था कि दिस इज़ ऑपरेटिव मॉडल, कि कैविटीज़ हैं उसमें कैविटीज़ को क्लीन किया और उसमें फिल कर दिया, मीन्स ड्रिल एंड फिल, जो मॉडर्न डेंटिस्ट्री डेट इज़ बेस्ड ऑन दैट. तो कैविटीज़ तो कम नहीं होंगी, जो जिसको कैविटी हो गई है उसको हमने ड्रिल करके फिल कर दिया.
1: जी.
2: तो हमने प्रिवेंशन के लिए तो कुछ किया नहीं. ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने प्रिवेंटिव मॉडल अपनाया, नॉन ऑपरेटिव केयर दिया उन्होंने पब्लिक में.
1: जी.
2: तो उससे जो है कैविटीज होने से उन्होंने रोका का, तो उन वो डेवलप कंट्रीज ने काफी हद तक कैविटीज को कंट्रोल कर लिया है. तो उन्होंने क्या क्या अपनाया, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि वो जो है ब्रश जो है आपको एक तो दिन में दो बार ही करना चाहिए, सुबह और रात को 2 मिनट तक करना चाहिए. और पेस्ट कौन सा यूज करना चाहिए और कब से शुरू करना चाहिए ब्रश करना. जैसे जो बेबी है न्यू बॉर्न, उसका फर्स्ट टूथ अपीयर होता है 8 to 10 months ऑफ एज में. तो जैसे ही फर्स्ट टूथ अपीयर हो तो उसको जो है सॉफ्ट बेबी ब्रश से उसको क्लीन करना स्टार्ट करना चाहिए. बिना शक आप बिना टूथपेस्ट के कर सकते हैं. ठीक है, और उस बच्चे का फर्स्ट विजिट टू द डेंटिस्ट शुड बी एट हिज फर्स्ट बर्थडे, मींस 1 ईयर की अराउंड उसको फर्स्ट विजिट आना चाहिए. सेकंड, जो न्यूबॉर्न टू लेस देन 18 ईयर जो किड्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उसमें जो ब्रश है बिना पेस्ट के आप कर सकते हैं. बट 18 मंथ टू 6 ईयर तक के जो बच्चे हैं, 6 ईयर तक के बच्चे, उनको जो है किड्स टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, जिसमें कि फ्लोराइड की मात्रा 500 ppm होना चाहिए. और जो 6 ईयर से अबव हैं उनको 1000 ppm एडल्ट टूथपेस्ट फ्लोराइड वाला यूज कर सकते हैं. तो उससे जो है प्रिवेंशन होगा डेंटल कैविटीज का. और सेकंड, ब्रश करना कैसे है, ब्रश करने के अलग अलग टेक्निक होती हैं. जैसे कि हम मोस्ट कॉमनली मॉडिफाइड बास टेक्निक जनरली हम एडवोकेट करते हैं. तो उसमें ये होता है ब्रश के ब्रिसल्स को 45 डिग्री एंगल पे रख करके गम लाइन पर, और उसको वाइब्रेटरी मोशन देना है और उसको फिर डाउन मूव करना है टुवर्ड्स द च्यूइंग सरफेस. तो मॉडिफाइड बास टेक्निक आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो आप उसको उसका वीडियो मिल जाएगा कैसे करना चाहिए ब्रश. और इसके अलावा आपको जो 18 मंथ से ऊपर मैंने आपको बताया कि 500 ppm टूथपेस्ट यूज़ करना है, 6 ईयर ऑनवर्ड्स जो है एडल्ट टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और ब्रशिंग फ्रिक्वेंसी ट्वाइस डेली करना है. और इसके साथ साथ डेंटल फ्लॉस जरूर करना चाहिए. डेंटल फ्लॉस है इंटर डेंटल एरिया जो है वो क्लीन करने के लिए होता है, और वो एक थ्रेड की तरह है, वो फिंगर्स पे लगा के सभी दांतों को बीच में से क्लीन करना चाहिए. आजकल जो है एंगुलेटेड फ्लॉस भी आता है.

0: हैंडल वाले फ्लॉस जिसको बोलते हैं
1: जी
0: राइट एंगल एंगल्ड फ्लॉस, तो उसमें ये है कि हैंडल लगा होता है उसको होल्ड करके आप इंटरडेंटल एरिया को क्लीन कर सकते हैं, उससे कैविटीज की और गम्स की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाएगी। फिर भी आपको रेगुलर एवरी सिक्स मंथ डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए डेंटल चेकअप के लिए।
1: जी डॉक्टर साहब, इसी बीच में हमारे पास सवाल आ रहे हैं, सरोज मल्होत्रा साकेत मेरठ से लिख रही हैं कि डॉक्टर साहब छोटे बच्चे ठीक से ब्रश नहीं करते, क्या करें? अभी आपने जो बताया, और उसके बाद क्या नीम से दांत की का नीम का दातुन करने से बीमारियों से बचाव हो सकता है, और क्या फिटकरी से गार्गल करते रहना ठीक है?
0: देखिए, अगर बच्चे ब्रश नहीं कर रहे हैं तो अब उनके पेरेंट्स को उनको सिखाना है कि कैसे ब्रश करना है। पेरेंट्स मिरर के सामने खड़े होकर पेरेंट्स उनको सिखाएं कि कैसे ब्रश करना है, वो खुद करें और रात को सोने से पहले जरूर ब्रश करें, खुद भी करें बच्चों को भी करवाएं। और दूसरा सवाल था उनका
1: कि फिटकरी से के पानी से क्या गार्गल करने चाहिए?
0: जो बेस्ट माउथ वॉश जो है ना हमारे माउथ के लिए, वो है गुनगुना पानी में हल्का सा नमक डालिए, जो सादा नमक होता है ना बस वही नमक डालिए, और उसको सलाइन बना के मतलब 0.9% जो होता है, तो जितना आंसुओं में नमक होता है ना उतना नमक आपको पानी कोस से पानी में डालना है, तो उससे जो है रिंस कर सकते हैं आप ब्रश करने के बाद।
1: और एक सवाल था कि नीम का दातुन क्या दांतों के लिए फायदेमंद है?
0: देखिए, हम यहाँ पर साइंटिफिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं, एविडेंस बेस्ड, ठीक है? तो हम जो है एज अ डेंटिस्ट, मैं एज अ प्रोफेशनल, मैं तो टूथब्रश एडवाइस करूंगा, सॉफ्ट टूथब्रश करना चाहिए दांतों को क्लीन करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़ गए हैं कॉल लाइन पर, उनका कॉल ले लेते हैं।
0: हाँ जी जरूर।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी,
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
2: मैं हेमलता बात कर रही हूँ दिल्ली से। मेरे दो सवाल हैं डॉक्टर सर से।
1: जी,
2: सबसे पहला सवाल मेरा है कि वैसे टेढ़े मेढ़े दांतों को अगर मुझे ब्रेसेस करवाना है तो उसकी कोई पर्टिकुलर एज होती है या हम कभी भी करवा सकते हैं किसी भी एज में? और अगर हम बड़ी एज में करवाते हैं तो क्या उससे फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि मैंने दांत में ना अपना कैपिंग करवाया था, तो वो 2 साल पहले करवाया था, तो अभी उससे जहाँ पे कैपिंग करवाया था जिस दांत में, वो उसमें थोड़ा सा दर्द होता है, कभी कभी होता है और समटाइम बहुत तेज भी होता है, तो क्या मुझे वो कैपिंग चेंज करवानी चाहिए? और एक तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे हम लोग दांतों की क्लीनिंग के लिए या उनकी वाइटनिंग के लिए हमें साल में हम कितनी बार उसे करा सकते?
1: जी,
2: यही मेरे 3 सवाल है। थैंक यू।
0: देखिए, आपका जो सवाल था कि कैपिंग करी हुई है दांत के ऊपर और कैपिंग की वजह से आपको पेन हो रहा है, देखो कैप जो होता है वो तो आर्टिफिशियल मटेरियल है टूथ के ऊपर, तो उसकी वजह से तो पेन नहीं है। पेन तो है कि क्या आपने उस दांत में आरसीटी कराया था कि नहीं कराया था। जनरली आरसीटी के बाद ही हम कैप एडवाइस करते हैं दांत के ऊपर, और अगर अभी भी आपको पेन हो रहा है तो हो सकता है आपने आरसीटी ना कराया, उसमें कैविटी हो जो नीचे नर्व को टच कर रही है, उसकी वजह से पेन हो सकता है। और दूसरा, अगर आप ठीक से इंटरडेंट कैप के साथ इंटरडेंटल एरिया में क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं डेंटल फ्लॉस से या इंटरडेंटल ब्रश से, तो वहाँ पर गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी माइल्ड पेन हो जाता है। तो आप अपने घर के पास जो भी डेंटिस्ट हैं आप उनको उनके पास चेकअप कराइए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए।
1: सर, इनका सवाल था कि क्या टेढ़े मेढ़े दांत को ठीक कराने की कोई उम्र है या किसी भी उम्र में कराए जा सकते हैं?
0: देखिए, अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो जितना जल्दी कराएंगे उतना ईजिली हो जाएंगे, और जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो जल्दी से जल्दी आपको कराना चाहिए इसका।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे पास एक और सवाल आया है व्हाट्सएप पे, सुनील कुमार विश्वकर्मा लखनऊ से पूछ रहे हैं, क्या टूथपेस्ट के स्थान पर दंत मंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है? इनकी उम्र 52 वर्ष है और ज़्यादातर दांत इनके घिस चुके हैं, ऐसा लिखा है इन्होंने।
0: देखिए, जो मंजन जिसको हम टूथ पाउडर कहते हैं, वो जो है एब्रेसिव होता है, वो दांत को घिस देता है। आप खुद ही कह रहे हैं कि दांत घिस गए हैं, वो दांत घिस ही इसलिए गए हैं कि आप पाउडर यूज कर रहे हैं, तो हम पाउडर नहीं एडवाइस करते हैं यूज करने के लिए। टूथ पेस्ट यूज करना चाहिए, फ्लोराइड वाला टूथ पेस्ट, जिसमें कि एडल्ट में एटलीस्ट 1000 mg/ppm 1000 ppm का फ्लोराइड होना चाहिए, तो पेस्ट यूज करना चाहिए।
1: जी जी जी। दिनेश कुमार भंडारी हमें नेपाल से लिख रहे हैं कि उनकी उम्र 37 साल है और जो उनके दांत हैं गम से खून निकलता है, क्या समस्या है ये इन्हें बताएं प्लीज।
0: अगर आपको कोई जनरल बीमारी या सिस्टेमिक बीमारी नहीं है तो उसका जो मेन रीजन जो होता है गम्स में से ब्लीडिंग का, वो लोकल फैक्टर जो कि प्लाक जो गम्स के आसपास डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जिंजिवाइटिस या पेरिडोनटाइटिस हो जाता है, तो ब्लीडिंग होती है ब्रश करते टाइम, कई बार अपने आप भी होना शुरू हो जाता है ब्लीडिंग, तो उसका मैंने पहले

0: बताया कि आपको ओरल हाइजीन जो है ठीक रखना है, ब्रशिंग ट्वाइस करना है, जिस टेक्निक से बताया वैसे करना है, और सॉफ्ट ब्रश यूज करें, और इंटरडेंटल ब्रश या फिर डेंटल फ्लॉस करके प्लाक को कंट्रोल करें। अगर आपके दांतों के आसपास टार्टर डिपॉजिट हो गया है, जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, तो उसका आपको प्रोफेशनल स्केलिंग एंड क्लीनिंग करा करके एक बार कराना होगा। उसके बाद उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं दांतों को।
1: जी डॉक्टर साहब, अंगद यादव आजमगढ़ यूपी से हमें लिख रहे हैं कि इनका 5 साल का बच्चा है जिसके ऊपर के दांत काले दिखाई दे रहे हैं और सामने के दांत जो हैं आधे आधे गल गए हैं। बच्चा रात में रोता है और उसको दर्द की शिकायत रहती है। डॉक्टर के पास ये गए थे और उन्होंने बोला है कि बच्चा छोटा है, दांत का दर्द नहीं, उसे किसी तरह की और वजह से दर्द हो रहा है। बच्चे के का दांत जो है वो भी दूध का दांत है, क्या करें?
0: देखिए, 5 साल की उम्र है तो दांत तो उसके दूध के ही हैं, डेसिड्यूस टीथ जिसको हम कहते हैं। तो अगर उसके दांत काले हो गए हैं, या तो उसमें कैविटीज हो गई हैं, या फिर उसको कभी चोट लगी होगी जिसकी वजह से वो डेड हो गए हैं दांत, उसकी वजह से भी काले हो जाते हैं, तो

0: रख सकते हैं दांतों को।
1: जी डॉक्टर साहब, अंगद यादव आजमगढ़ यूपी से हमें लिख रहे हैं कि इनका 5 साल का बच्चा है जिसके ऊपर के दांत काले दिखाई दे रहे हैं और सामने के दांत जो है आधे आधे गल गए हैं। बच्चा रात में रोता है और उसको दर्द की शिकायत रहती है। डॉक्टर के पास ये गए थे और उन्होंने बोला है कि बच्चा छोटा है, दांत का दर्द नहीं, उसे किसी तरह की और वजह से दर्द हो रहा है। बच्चे के का दांत जो है वो भी दूध का दांत है, क्या करें?
0: देखिए 5 साल की उम्र है तो वो दांत तो उसके दूध के ही हैं, डेसिड्यूस टीथ जिसको हम कहते हैं। तो अगर उसके दांत काले हो गए हैं या तो उसमें कैविटीज़ हो गई हैं या फिर उसको कभी चोट लगी होगी जिसकी वजह से वो डेड हो गए हैं दांत, उसकी वजह से भी काले हो जाते हैं। तो अगर उसको उसमें दर्द हो रहा है तो आपको चेकअप ही कराना पड़ेगा तो क्या दांतों की वजह से है या नहीं है। अगर है तो फिर उसका ट्रीटमेंट कराना होगा, यही है इसका।
1: सर हम अभी बात कर रहे थे दांतों की, अब मैं बात आपसे करूंगी मुंह से जुड़े स्वास्थ्य की। एक बेहद कॉमन प्रॉब्लम है मुंह से दुर्गंध आना। ये समस्या कई बार उन लोगों को भी परेशान करती है जो अच्छे से ब्रश करने के साथ साथ टंग क्लीनिंग पर भी ध्यान देते हैं, इसका कारण क्या है?
0: देखिए मुंह से स्मेल आना जैसे हेलिटोसिस हम कहते हैं वो मोस्ट कॉमनली तो गम्स की प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से होती है। जैसे आपने बोला कि ब्रश करते हैं तो ये नहीं बताया आपने कि फ्लॉस भी करते हैं। मैं बार बार एडवोकेट कर रहा हूँ कि ब्रश भी करना है, फ्लॉस भी करना है। डेंटल फ्लॉस जो एक धागे की तरह होता है वो सभी को डेली करना चाहिए फ्लॉस। तो फ्लॉस आप साथ में करिए, इंटरडेंटल एरिया क्लीन रहेगा तो उसकी वजह से स्मेल नहीं आएगी। अगर ये तो है लोकल फैक्टर जो गम्स की वजह से हो जाता है, यहाँ कुछ कैविटीज हैं आपके दांतों में बहुत बड़ी बड़ी जिसके अंदर के फूड डेब्रिज रह जाते हैं, क्लीन नहीं हो पाते, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो वो फाउल ऑडर प्रोड्यूस करते हैं तो कैविटीज की वजह से भी हो सकती है। तो अगर आपके ओरल हाइजीन पहले चेकअप कराइए, अगर सब ठीक है तो उसका कुछ सिस्टेमिक कारण भी हो सकता है। अगर कुछ आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हेलिटोसिस हो जाती है या ईएनटी की जैसे पैरानेजल साइनसिस में कोई साइनोसाइटिस है उसकी स्मेल भी इसी तरह माउथ के करीब आती है तो इस तरह से हो सकती है।
1: जी मुंह के अंदर दुर्गंध आने का कारण हमारा पाचन तंत्र भी हो सकता है पेट से जुड़ी परेशानियां। डॉक्टर साहब टंग क्लीनिंग जो है वो एक ओरल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके साथ साथ सर ये भी बताइए कि मुंह में छाले हो जाना जो कई बार एक बड़ी समस्या बन जाता है खासकर गर्मी के सीजन में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इसकी क्या वजह है? क्या ये छाले ही अल्सर है या कुछ और कैसे इनका निदान किया जा सकता है?
0: देखिए टंग क्लीनिंग तो जरूर करना चाहिए, जब हम ब्रश करते हैं सभी तो उसी ब्रश से आप टंग को भी क्लीन कर सकते हैं। तो टंग जो है नॉर्मली पिंक कलर का होता है तो ऐसे उसके ऊपर कुछ डिपॉजिट्स नहीं होने चाहिए ब्लैक या वाइट कलर का, तो अगर कुछ है तो उसका चेकअप होना चाहिए। तो सेकंड सवाल था आपका कि मुंह में छाले हो जाते हैं। देखिए छाले तो बहुत तरह के मुंह में हो जाते हैं, बहुत कॉमन जो है वो तो है एप्थस अल्सर होते हैं, वो जनरली होते हैं स्ट्रेस की वजह से या नींद ना पूरी हो उसकी वजह से या कुछ कई बार क्या होता है कि जैसे फीवर हुआ तो उसकी वजह से ब्लिस्टर्स हो जाते हैं मुंह के अंदर या लिप्स के पर, तो ब्लिस्टर जब रप्चर होते हैं तो वो जो है वायरल हर्पिस इन्फेक्शन की वजह से भी जो है छाले हो जाते हैं। और इसके अलावा कोई दांत कहीं शार्प है या कोई कैक आर्टिफिशियल क्राउन लगा हुआ है वो शार्प है, उसके रेगुलर ट्रॉमा की वजह से भी मुंह में अल्सर हो जाते हैं। और कुछ लोगों को जो है हैबिट होती है टोबैको खाने की या स्मोकिंग की तो उनमें भी अल्सर हो जाता है। तो अगर कोई भी अल्सर किसी भी तरह का अल्सर है 2 से 3 हफ्ते की अगर उसकी हिस्ट्री है तो उसका बायोप्सी इज मस्ट, वो मैंडेटरी है कि उसका बायोप्सी होना चाहिए। अब सेल्फ मेडिकेशन या एक खाली मेडिकेशन से ट्रीटमेंट नहीं होगा, बायोप्सी से रूल आउट करना है कि कहीं इसके अंदर कोई कैंसर की शुरुआत नहीं हो गई है। तो इसलिए जो है
1: क्या ये ओरल कैंसर से भी सर रिलेट करता है?
0: हाँ जी बिल्कुल, कुछ रेड फ्लैग फीचर्स होते हैं अल्सर के अंदर। वही मैंने स्टार्ट किया था कि अगर 2 to 3 weeks से ज़्यादा कोई भी अल्सर है तो उसकी बायोप्सी होना चाहिए। अगर कोई अल्सर जो है अगर हम उसको फील करें और वो रफ फील हो रहा है, फर्म फील हो रहा है, थिक फील हो रहा है तो वो एक रेड फ्लैग फीचर है कि वो कन्वर्ट हो सकता है कैंसर की तरफ, उसमें हो सकता है। इसके अलावा अल्सर के साथ साथ अगर जॉ बोन के नीचे या मुंह के आसपास कोई स्वेलिंग हो रही है, कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो उस वो भी एक फीचर है, रेड फ्लैग फीचर जिसको कि हम बोलते हैं। अगर पेशेंट को जीरोस्टोमिया है, ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा मुंह के अंदर और साथ में अल्सर है तो

0: भी एक रेड फ्लैग फीचर है, उसमें कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अल्सर्स अलग अलग तरह के होते हैं, वो एक स्पेशलिस्ट को दिखा करके आप चेकअप कराइए और ट्रीटमेंट लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं होता तो उसका बायोप्सी करा करके उसका डायग्नोसिस होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़ गए हैं, ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो
2: हेलो
1: जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: कैसे हैं मैम?
1: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
2: मैं अच्छा हूँ। मैं आपका प्रोग्राम से प्रोग्राम का दिल से चाहता हूँ।
1: जी जी।
2: और डॉक्टर साहब का भी शुक्र अपने दिल से करना चाहता हूँ।
1: जी जी। आप सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
2: मेरा सवाल ये है जी, मेरा जानदात एक जान मेरी फूट रही है और वो कभी खींच जाती है कभी बंद हो जाती है, और मेरा जानदात कभी खींच जाते हैं कभी बंद हो जाता है, ठंडा गर्म लगता है
1: जी,
2: कौन सा बरतना चाहिए जी?
1: जी जी।
2: सवाल है जी,
1: जी आपने सवाल इनका सुन लिया डॉक्टर साहब, इनकी दाढ़ की शायद प्रॉब्लम है।
0: हाँ, ये बोल रहे हैं कि सेंसिटिविटी होती है, तो हमने नॉर्मली देखा है कई पेशेंट्स या जनरल पब्लिक जो है, कभी भी सेंसिटिविटी होती है तो वो टेलीविजन पे या रेडियो पे एक एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं कि सेंसिटिव पेस्ट लगा स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमें जो है ऐसे टीवी पर या कहीं एडवर्टाइजमेंट देख करके सेंसिटिव पेस्ट अप्लाई करना नहीं शुरू कर देना चाहिए। तो आपको अगर सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी के बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे कि दांत घिस गए हैं या दांत कहीं से क्रैक हो गया है, दांतों में कैविटीज हो गई हैं, गम्स नीचे चले गए हैं दांतों को छोड़ करके, रूट्स एक्सपोज हो गई हैं, उसकी वजह से सेंसिटिविटी हो सकती है। तो कई कारण है, टूथ क्रैक हो गया है उसकी वजह से हो सकता है। तो पहले तो डायग्नोसिस होना चाहिए कि सेंसिटिविटी हो क्यों रहा है। अपने आप जो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, ओवर द काउंटर जाके सेंसिटिव पेस्ट नहीं लगाना चाहिए, और जो है आप डेंटल चेकअप कराइए और जो भी उसका डायग्नोसिस है फॉर उसका फिर ट्रीटमेंट होना चाहिए।
1: जी, प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस पर आज हमें बहुत बेहद खास जानकारियां मिल रही हैं और ये जानकारियां हमारे साथ साझा कर रहे हैं डॉक्टर हरमीत सिंह। कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात कर रहे हैं दांतों और मौखिक स्वच्छता से जुड़े खास विषय पर। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं TMJ की, तो ये किस तरह की बीमारी है और इसके होने के कारण क्या है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है?
1: TMJ उसको जैसे कि टेम्परोमैंडिबुलर ज्वाइंट कहते हैं, वो एक जॉ बोन का ज्वाइंट है। जैसे नी ज्वाइंट होता है, एल्बो ज्वाइंट होता है, ऐसे जॉ का भी एक ज्वाइंट

0: है, इसको टीएमजे बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जो डिसीजेज हैं उसको हम टेम्परोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो जनरली ये होता है, इस पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो उनको ये बोलते हैं कि उनको मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जॉ मूवमेंट में, सुबह उठते हैं तो उनको जॉ मूवमेंट करते टाइम पेन स्टार्ट होता है, पेन जो है माइल्ड टू मॉडरेट होता है, और वो कान के आसपास या जॉ में या कान के ऊपर या कान के बैक साइड में कई बार नेक तक पेन हो जाता है, तो वो टीएमजे की वजह से हो सकता है, तो उसका चेकअप कराना चाहिए। तो जनरली उसका हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि आजकल हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें स्ट्रेस बहुत होता है, स्ट्रेस लेवल, और स्ट्रेस की वजह से वो सारा दिन जो है अपने जॉ को क्लिंच करते रहते हैं, और कई बार तो अनकॉन्शियसली सोने के बाद भी वो जॉ को क्लिक करते रहते हैं, जॉ को ग्राइंड करते रहते हैं, टीथ को ग्राइंड करते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो मसल्स हैं जॉ की वो जो है स्ट्रेस में आ जाती हैं, स्पाजम में चली जाती हैं, तो उसकी वजह से जॉ में स्टिफनेस हो जाता है, तो फिर मॉर्निंग में पेन करता है
1: जी।
0: तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए करना ये है कि सबसे पहले तो स्ट्रेस रिलीव करना है कि स्ट्रेस को कैसे रिलीव किया जाए, चाहे आप योगा करके करिए, चाहे एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, तो स्ट्रेस को रिलीव करना है। इसके साथ साथ स्ट्रेस के अलावा सेकंड रीज़न जो नॉर्मली टेम्परोमेंटलर जॉइंट डिसऑर्डर्स का होता है वो स्लीप अगर प्रॉपर ना ली जाए, नींद पूरी नहीं हो रही है स्ट्रेस की वजह से, तो जैसे हम एडवाइस करते हैं 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, उसी तरह टीएमजे के लिए भी 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। तो मैं एक एडवाइस करूंगा, स्लीप हाइजीन फॉलो करना चाहिए, स्लीप हाइजीन। तो उसमें यह है कि कोई भी इंसान उसको जो है एक कांस्टेंट टाइम पर सोना चाहिए और कांस्टेंट टाइम पर उठना चाहिए, सेम टाइम पर। जैसे रात को अगर 9 बजे 10 बजे सो रहे हैं तो रोज उसी टाइम ही सोएं, और उसे सुबह 5-6 बजे उठ रहे हैं तो उसी टाइम ही उठना चाहिए
1: जी।
0: और दोपहर का या दिन में अगर सोने का टाइम है तो वो उसको लिमिटेड रखें कम से कम, और रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले मोबाइल और स्क्रीन टेलीविजन जो है उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, और जहां आपको सोना है वहां पर आपको नॉइज कम कर देनी चाहिए, नॉइज नहीं आना चाहिए, लाइट डिम कर देनी चाहिए, और कैफीन को दोपहर के बाद नहीं लेना चाहिए। कैफीन मीन चाय कॉफी जैसे ड्रिंक्स लेते हैं वो शाम को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, तो उसका क्योंकि इफेक्ट रहता है कि नींद नहीं आएगी फिर आपको। और रात के टाइम खाना जो है लाइट खाना चाहिए, और जनरली 2 to 3 hours बिफोर बेड डिनर हो जाना चाहिए, और डेली आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसकी वजह से आपको नींद प्रॉपर आएगी, स्ट्रेस नहीं होगा, तो आपका टेम्परोमैंडिबुलर जॉइंट के डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण यही है। इसके अलावा और भी कारण होते हैं, वो आपको डेंटल चेकअप कराएंगे तो फिर पता चलेगा।
1: डॉक्टर साहब, आपने स्लीप हाइजीन पर इतनी गहरी हमें अच्छी जानकारी दी, तो इसका मतलब तो ये है कि जो हम अपनी दिनचर्या है अगर उसको अच्छा रखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा
0: आपके हेल्थ के लिए, जनरल हेल्थ के लिए भी ये सब अच्छा रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, आपने टीएमजी की बात करी, जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें लिखती है, व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर टीएमजे डिसफंक्शन एंड व्हाट इज द बेस्ट क्योर फॉर दिस?
0: रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। समटाइम्स देयर इज मेल ऑक्लूजन और defective restoration, or if there is artificial teeth, occlusion is not there proper, so that all can cause TMJ disorder. So treatment I already explained, stress should be relieved and proper sleep should be taken.
1: Dr. Saab, ek aur important question hai ki ab baat unki kar lete hain jo denture ka istemal karte hain, unki oral health kitni important hai aur dentures ke type kya hai, क्या इसको लगाने के बाद मुंह की सफाई यानी हाइजीन को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं?
0: बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। जैसे कि अभी हमने स्लीप हाइजीन की बात की, ऐसे ही हम अब डेंचर हाइजीन की बात करना बहुत जरूरी है फॉर द डेंटिस्ट, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आर्टिफिशियल डेंचर पहनते हैं, जैसे कि कंप्लीट डेंचर अपर लोअर है, या रिमूवेबल पार्शियल डेंचर है, या फिक्स पार्शियल डेंचर है, कुछ लोग इम्प्लांट्स लगाते हैं उसके ऊपर क्राउन लगा होता है, तो इनका हाइजीन मेंटेन कर, जो तो फिक्स्ड है उसको तो आपको डेंटल फ्लॉस और इंटरडेंटल ब्रश करके आपको जो है उसको क्लीन रखना है, और जो रिमूवेबल डेंचर है उसको जो है आपको रेगुलर क्लीन करना है, और रात को सोते टाइम तो उसको उतार करके एक डेजिग्नेटेड जो कंटेनर है रखने के लिए आपने रखा हुआ हो उसके अंदर रखना चाहिए, ताकि गम्स जो है दांतों के नीचे गम्स हैं उनको जो है रेस्ट मिले। और डेंचर हाइजीन के लिए मैं आपको बताऊंगा, ट्रेडिशनली जो था वो ये है कि वेट स्टोरेज,

0: टेंशन को जो है पानी में रखा जाता है ताकि वो जो है उसका जो मटेरियल है वो डैमेज ना हो, या मीन उसमें कुछ चेंजेस ना आए. तो उसको क्लीन जो है कि वो कैसे करना है, जैसे ही आपने डेंचर उतारा उसको सबसे पहले तो उसको वाटर से क्लीन करना है. एक सॉफ्ट ब्रश लेना है, उसके साथ जो भी फूड डेब्रीज हैं उसके ऊपर उसको क्लीन करना है. तो डेंचर को टूथपेस्ट के साथ नहीं, क्योंकि उसके अंदर एब्रेसिव होता है, तो उसके साथ नहीं करना चाहिए. अब नॉर्मल सा एक सोप सोल्यूशन बना करके तो उससे आप क्लीन कर सकते हैं डेंचर को. बट अगर उसमें कोई स्टेन्स हो रहे हैं दांतों के ऊपर, या कोई स्मेल आ रही है या किसी तरह से, तो उसके लिए डेंचर क्लींजिंग टैबलेट्स आते हैं. ठीक है, तो वो उसमें बॉक्स में डाल करके उसको कुछ घंटे के लिए उसके अंदर छोड़ सकते हैं, क्योंकि टैबलेट्स के अंदर वाटर में डालने से एफर्वेसेंट्स आते हैं, उसमें ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट होते हैं, और बफर होता है जो कि उसको डिसॉल्व करता है उसके अंदर जो भी डेब्रिज हैं उसको क्लीन करने के लिए. इसके अलावा अगर टैबलेट्स नहीं है तो विनेगर जो होता है, एसिटिक एसिड होता है, उसको डाइल्यूट करके 1:4 वाटर से डाइल्यूट करके तो उसके अंदर हम कुछ घंटे के लिए या ओवरनाइट रख सकते हैं. बट उसको थॉरली रिंस कर लेना चाहिए सुबह उठ करके अच्छे से बिफोर यू पुट इन द माउथ, तो उसको क्लीन करना है. और इसके अलावा जो आजकल जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, तो आजकल जो डेंचर बन रहे हैं वो बहुत अच्छे मटेरियल से बन रहे हैं, एक्रेलिक जो है अच्छी क्वालिटी का है, तो उसमें डिस्टोर्शन नहीं होता. तो अभी जो एडवोकेट करते हैं कि डेंचर को जो है अब उतारने के बाद वॉश करके क्लीन करके ड्राई करके आप ड्राई कंटेनर में रखिए, क्योंकि वो उसमें श्रिंकेज के चांसेस नहीं है, वो डैमेज नहीं होगा. तो अगर गुड मटेरियल का है तो उसको आप ड्राई स्टोरेज भी कर सकते हैं. तो ड्राई स्टोरेज का फायदा यह है कि उसके अंदर जो ह्यूमिड एटमोसफेयर नहीं मिलेगा, तो उसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो नहीं करेंगे, तो उसमें चांसेस ऑफ कैंडिडाइसिस नहीं होंगे पेशेंट को, तो ड्राई भी स्टोरेज कर सकते हैं. बट जैसे कि आपको डेंटिस्ट ने या मैन्युफैक्चरर ने आपको रेकमेंड किया है आपका मटेरियल कैसा है उसको फॉलो करें. ठीक है, और डेंचर से एसोसिएटेड पेशेंट को जो है कैंडिडायसिस, मुंह के अंदर सफ़ेद निशान हो जाते हैं, मतलब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो डेंचर जो है क्लीन करना चाहिए प्रॉपरली. और एंगुलर केलाइटिस जिसको बोलते हैं कि माउथ के कॉर्नर पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वहाँ पर बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, उसका मेन कारण तो होता है कि आपका जो डेंचर है अगर वो लूज हो गया है या फिर उसकी हाइट कम बनी है, तो उसके माउथ कॉर्नर पे जो है फोल्ड होना शुरू हो जाता है, तो वहां पर एंगुलर केलाइटिस हो जाता है. तो डेंचर की हाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए. अगर डेंचर स्टेबल है और वो उसमें हिलता नहीं है, लूज नहीं है, तो फिर वो डेंचर एंगुलर केलाइटिस और कैंडिडाइसिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं.
1: जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं ब्रेसिस जो इस्तेमाल करते हैं उनकी, और जिनके दांतों में ब्रेसिस लगे हैं उनको दांतों की सफाई उनके लिए एक बड़ी समस्या होती है. ऐसे में कैसे दांतों की सफाई के साथ ओरल हेल्थ को भी बेहतर रखा जाए?
0: देखिए ब्रेसेस जो है दो तरह के आते हैं, एक तो रिमूवेबल ब्रेसेस होते हैं और फिक्स्ड ब्रेसेस होते हैं. रिमूवेबल को तो आपको रोज मतलब निकाल करके उसको वैसे ही क्लीन करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है. रिमूवेबल ब्रेसेस को ब्रश से सोप सॉल्यूशन से क्लीन करना है. इसके अलावा जो फिक्स्ड ब्रेसेस हैं जिसको कि हम नहीं पेशेंट अपने आप नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए उसके लिए स्पेशल ब्रश आते हैं, ऑर्थो ब्रश नाम से ब्रश आते हैं. तो उससे जो है क्लीन हाइजीन क्लीन रखना है. इंटरडेंटल ब्रश यूज करके आप उसको एरियाज को क्लीन रख सकते हैं. तो कहीं भी फूड डेब्रिज या प्लाक डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो अगर प्लाक रहेगा तो उससे टीथ में लूज होने के और ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट फेल होने के चांसेस रहेंगे. तो हाइजीन इंप्रूव करके रखना बहुत जरूरी है ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट के अंदर भी.
1: जी जी डॉक्टर साहब, सागर हमें विजयपुरा कर्नाटका से लिख रहे हैं कि व्हाट ओरल रूटीन वी कैन फॉलो टू कीप आवर टीथ एंड ओवरऑल ओरल हेल्थ इन गुड कंडीशन. और हमारा भी आपसे यही सवाल है कि अब कार्यक्रम में समय बहुत कम रह गया है, तो कैसे अपने दांतों और अपने जो मुंह के स्वास्थ्य को हम अच्छे से रख सकते हैं, इसके लिए डूज एंड डोंट्स क्या हैं?
0: देखिए सबसे पहले तो ये है कि पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए कि वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कौन सा यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो जो भी कॉर्पोरेशन से सप्लाई आते हैं उसमें 1% फ्लोराइड होता है, 1 ppm फ्लोराइड होना चाहिए. तो कम्युनिटी वाटर फ्लोरिडेशन एक वन मेथड है जिससे कि कैविटीज को, दांतों की कैविटीज सड़न को हम रोक सकते हैं. इसके अलावा स्कूल लेवल पर एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए कि ब्रशिंग टेक्निक

0: कैसे करना चाहिए, फ्लॉस कैसे करना चाहिए, आजकल तो बुक्स में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक्स में भी अवेलेबल है कि ब्रशिंग और फ्लॉसिंग कैसे करना चाहिए. और इसके अलावा डेंटल फ्लॉस, इंटरडेंटल ब्रश मैंने आपको बता ही दिया. फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, ऐसे ही नहीं कोई भी टूथपेस्ट उठा करके या पाउडर से या ऐसे, जो एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री है हम उसकी बात कर रहे हैं. तो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए एडल्ट में एटलीस्ट 1000 PPM, चाइल्ड में बिलो 6 ईयर 500 PPM टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए. और टूथपेस्ट जब ब्रश किया टूथपेस्ट के साथ तो आपको स्पिट करना है 10 मिनट तक, पानी से रिंस नहीं करना, ताकि जो पेस्ट का इफेक्ट है दांतों के ऊपर वो रहना चाहिए. तो स्पिट करें ब्रश करने के बाद 10 मिनट तक पानी से रिंस नहीं करें, 10 मिनट के बाद आप रिंस करिए. इसके अलावा डाइटरी मॉडिफिकेशन होती हैं कि आप जो है शुगर का कंजम्पशन मींस मीठे का जो है कम से कम रखें, स्टिकी और एसिडिक फूड
1: खासकर रात में,
0: खासकर रात में बिल्कुल, और स्टिकी फूड जो है जो दांतों पे चिपके रह जाते हैं उसको जो है अवॉइड करना चाहिए. एसिडिक फूड जैसे लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कोलास पीते हैं तो उसको जो है अवॉइड करना चाहिए. और
1: सर अगर कभी स्टिकी फूड लेते भी हैं तो उसके बाद हमें एकदम ब्रश करना,
0: हाँ, इसके बाद बिल्कुल उसके बाद तुरंत बाद ब्रश कर लेना चाहिए. और जैसे कुछ बच्चों को जो है टॉफीज या चॉकलेट्स रेगुलर नहीं देना चाहिए, उनको ओकेजनली कभी बर्थडे पे या दे सकते हैं, तो उस टाइम आप उसी टाइम जो है साथ में ब्रश जो है वो कर लेना चाहिए. और एवरी 6 मंथ जो है डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए. और बच्चों में जो है पिट एंड फिशर सीलेंट्स होते हैं तो वो हम एडवाइस करते हैं कि अगर वो अगर पिट एंड फिशर्स हैं उनको प्रोन है कैविटीज के तो सीलेंट्स लगा करके कैविटीज को होने से रोक सकते हैं, डेट इज प्रिवेंटिव मेजर. इसके अलावा हम जो जैसे कि व्हाइट स्पॉट लीजन्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कैविटीज जो स्टार्ट होती व्हाइट स्पॉट रीजन से स्टार्ट होते हैं, अगर वहीं पर हम कैविटी फ्लोराइड वार्निश या फ्लोराइड जेल अप्लाई करते हैं तो वो केरीज जो है कैविटीज में कन्वर्ट होने से रुक जाती है. और अगर फिर भी आपको शुगर लेना ही है तो बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं, नेचुरल स्वीटनर आते हैं, जैसे स्टीविया है वो नेचुरल प्रोडक्ट है, वो मीठा है बट उसके अंदर शुगर नहीं है, तो आप चाय में या दूध में.
1: और इसके अलावा सर हम फ्रूट्स भी तो ले सकते हैं जिनसे हमें नेचुरल स्वीटनेस मिलती है, जो
0: हाँ नेचुरल फ्रूट, नेचुरल फ्रूट आप खा सकते हैं बट उसमें भी कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, तो फिर भी आपको उसके बाद भी ब्रश तो करना ही करना चाहिए. हाँ जी.
1: तो साथियों ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो था प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीज से जुड़ा, जिसमें हमने जाना कि कैसे रखें अपने मुंह के स्वास्थ्य को और दांतों के स्वास्थ्य को बेहतर. और इस पर हमें बेहद खास जानकारी दी डॉक्टर हरमीत सिंह जी ने, जो हैं डेंटल स्टाफ सर्जन डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली. डॉक्टर सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी खास जानकारी हमें दी. और इसके साथ आज के लिए अपनी दोस्त पूजा को दीजिए इजाजत. नमस्कार.
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक. होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी. तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात.
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल. पुरानी यादें नया जोश है. देश का रेडियो अब भी बॉस है. आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल.

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हों या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड हैं मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का।

0: कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूँ। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं CRPF की तरफ से जय हिंद बोलता हूँ। और ये एक प्योर नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुँचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफ़र से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं। लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है, अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
1: CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज CRPF हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है CRPF। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं, जैसे BSF इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, CISF वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और SSB इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही CRPF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो CRPF ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक CRPF ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज CRPF ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो, जिस तरीके का CRPF ने काम किया है। और ऐसा वहीं नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो CRPF को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि CRPF सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है
0: जी। होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070, इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप हम तक पहुँचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार हैं भेजिए ज़रूर।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चलें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यूर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, MBA इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप CRPF ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली CRPF। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये CRPF ऑर्गेनिकली हुआ, मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था वर्दी की तरफ, एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था। बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप CRPF ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, CRPF भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था, मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे, वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो अब

0: बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस ज़माने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है चारों तरफ, आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस ज़माने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोज़गार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पर जा सकता है, और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें आप अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं
1: जी। तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं।
0: 2004 तक ये एग्जामिनेशन CPOs कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से UPSC ने ले लिया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्ज़ाम निकालती हैं। तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 3-4 पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाय फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीज़ें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और UPSC की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं। आज की डेट में बहुत आसान है
1: जी। अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत CISF, BSF और CRPF।
0: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, SSB इंडो नेपाल बॉर्डर, ITBP इंडो चाइना बॉर्डर, CRPF ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आल्सो, बट वो सारे केवल VIP सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स आल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस।
1: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता
0: है? इसमें NSG और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है। बाकी ये जितने CISF, CRPF, ITBP, BSF और इन सब की सिलेक्शन उस UPSC के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कितनी वैकेंसीज है, उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है, जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं आप, असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं।
1: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, ये खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
0: मैं MBA करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफकोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फ़ोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई दूरभाष फ़ोन के माध्यम से, लोगों ने बताया तो बधाइयाँ आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात। तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे, और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मेरे बैंक में सारे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफकोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
1: वाह, क्या बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि सरकार का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुँचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
0: निसंदेह है, बहुत खुशी के बहुत है। मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए कि हाँ देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे और ऑफ कोर्स मैं भी काफी खुश था।
1: जी, निश्चित रूप से जब आपको रास्ता

0: चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुँचना है, इसे सुखद बात और कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति, जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जो जिनको रास्ते चुनते हैं, वो तो अपने आप को ज़्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा, ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जब आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया, उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस प्रकार के बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की, यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता CRPF तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
1: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था। मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था, तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहाँ भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको, आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक डिफरेंट, एक अलग अलग अलग तरीके का निखर कर आता है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था, वो मुझे बहुत हैंडी रहा CRPF में भी। यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
0: अपने, हाँ,
1: बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
0: जी, तो CRPF तक का रास्ता सहल किया और उसके बाद CRPF में रहते हुए, यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से, यानी कि अपने बाल काल से ही जो है, आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
1: जी,
0: तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आतुर हूँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही, एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके, कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ FM रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है, शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी की FM रेनबो पर हमें। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका कौनियाल। और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं, कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी ज़ुबानी सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज़्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आप से मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें, तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में, जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में CRPF ने लड़ाई लड़ी थी, और उसमें हमारे CRPF के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट की याद में वैलर डे मनाया जाता है CRPF में। CRPF ने इन तीनों थिएटर्स, जम्मू कश्मीर,

0: एलडब्ल्यूई थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो सीआरपीएफ का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, सीआरपीएफ अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो सीआरपीएफ एक मिनी इंडिया। आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो सीआरपीएफ उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे, और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो सीआरपीएफ के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। सीआरपीएफ एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। सीआरपीएफ को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। सीआरपीएफ को एक अशोक चक्रा, 10 कीर्ति चक्रा, 39 शौर्य चक्रा, 200 से ज़्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, सीआरपीएफ के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सीआरपीएफ को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती हैं।
1: जी निश्चित ही, आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं सीआरपीएफ ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे और ये खेलना आज तक जारी है, और आपको लगता है कि ये जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हैं, कौन कौन से गेम्स हैं?
0: देखिए सीआरपीएफ में अब हमारा चूंकि मूवमेंट काफ़ी फ्रिक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफ़ी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ वॉर, रस्सा कसी का जो गेम होता है वो, उससे काफ़ी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में।
1: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेचर के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स हैं जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की भावना। क्या बात है। तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन CRPF में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको CRPF ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो CRPF का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के

0: भी जाना जाता है, काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी हैं, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पिनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
1: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
0: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही

0: ना हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पिनल कोड्स हैं, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से 1 साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था।
1: जी, तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
0: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई, तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी। और मैं 1 साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा, उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावित था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा, और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा सीआरपीएफ की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और सीआरपीएफ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन दिनों मैं याद करता हूँ, एक नक्सल अभियान में ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें सीआरपीएफ की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़ कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था, तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था। और सीआरपीएफ ने मतलब सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं, तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी, तो ऑफकोर्स बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
1: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
0: जम्मू कश्मीर मैं 2 मौक़ों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफ़र डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला, और सीआरपीएफ ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहाँ का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में, तो सीआरपीएफ का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो सीआरपीएफ आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी सीआरपीएफ के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब भी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर, तो सीआरपीएफ एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं, तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते ना होने के अलावा सीआरपीएफ का एक मानवीय पहलू भी है, तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी सीआरपीएफ, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है, और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल बासिंदे हैं, उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी।
1: वाह, क्या
0: बात। तो एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा, और 2 मौक़ों पे मैं गया, 8 साल मैं कश्मीर में मैं बिता कर आया, तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
1: वाह, क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या क्या क्या आपको जिम्मेदारियाँ दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज़्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
0: निसंदेह सीआरपीएफ, आप सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअल लीव और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन, तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है, वो आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है, और आप उसको जीते हैं, और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं, तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है, जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे

0: कनेक्शंस बनाए, तो काफी अच्छा अनुभव रहा है
1: जी। एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है मुझे ऐसा महसूस होता है। सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है
0: जी,
1: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज़्यादा स्थापित कर सके, तो क्या आपकी किसी ये कहूँगी कि जो आपने सोचा हुआ था आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
0: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो CRPF में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं CRPF का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
1: बात है 90 वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिए आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे।
0: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो CRPF करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी CRPF करती थी। तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
1: क्या बात है, चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसा कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे, और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप CRPF में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है ना केवल CRPF का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जिसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे, तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
0: निसंदेह ये होता था, एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था। तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो, वो ना करें। तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं। तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था, और CRPF भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप्स तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए, तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का CRPF के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के, CRPF ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है, आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो CRPF का है, और CRPF लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है, और मैं इसलिए CRPF मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
1: वाह क्या बात है, जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक, इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है।

0: जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है। क्या ऐसा होता है?
1: बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं। आप एक जो आपका आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में। एक ना बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर। आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
0: जी
1: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है। आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन कर था, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं तो और मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक है। आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा।
0: शायद समझना
1: जी
0: मुश्किल है, और आपकी बातों से जो आपके भाव पढ़ रही हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत।
1: जी जी
0: बिल्कुल वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवां आज तक कायम है, क्योंकि रोज़ जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वही पहली मोहब्बत सा आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत सा आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो वह अधूरा, यकीन मानिए, अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज़ के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी ज़बानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुँचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी ज़िंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशन्स पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं। ऐसे में उनका योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं CRPF ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: माँ बाप मुझे टाइम ट्रैवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं CRPF ज्वाइन करूँगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूँगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर, प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियाँ मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में मैं कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस, अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, तो एक मैं इस मामले में, अगेन, मैं काफ़ी काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य से आपने बैठा लिया। और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है, वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना, और वो कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ।
0: जी, निश्चित।

0: रूप से, निश्चित रूप से। और कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज़ द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हों या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहाँ आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहाँ पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो, उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी ज़िंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
2: तो
1: जी तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। और मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिना का गीतमाला लेकर आते थे। और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे और उसको हम बहुत इंतज़ार करते थे, और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिना का गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे। क्या गोल्डन वॉयस थी उनकी। तो ये सारी यादें थी और आज वो सारी यादें ताज़ा हो गई। और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का, इस मौके के लिए।
0: बिल्कुल। और ये जो सफ़र है ये बहुत ही सुखद सफ़र है। हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो CRPF ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द मैं बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने,
0: बिल्कुल,
1: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें, और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
0: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से, कि आप अपने बच्चों को ना खेल में ज़रूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स तो एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी, और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल। तो अपने बच्चों को ज़रूर खेलों से आप जोड़ कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो 4 दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है,
1: निसंदेह।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका, आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूँगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है। निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर।
1: धन्यवाद। जय हिंद।
0: जय हिंद।

0: सुहान जी, मैं क्या जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, अदाब, मेहरबान, कदरदान, 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते कर दिया तुहाडा स्वागत। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू हो गया है जी, युवाणी, ते मैं तुहाडी दोस्त आरजे रितिका मेरे नाल ने,
1: ते मैं तुहाडा दोस्त बागेश्वर।
0: ते असी हाजिर हो गए हां लै के तुहाडा फेवरेट प्रोग्राम युवाणी। ते मैनू लगदा अज दा प्रोग्राम बहुत खास होएगा, है ना बागेश्वर?
1: बिल्कुल, रोज़ का प्रोग्राम बड़ा खास होंदा है, ते आज भी खास हैगा है क्योंकि तुहाडे दो दोस्त बैठे ने, तुहाडे नाल गल्लां करनियां ने। अज तुहानूं दस दिंदे कि सैगमेंट्स होणगे। सब तो पहला तो असी कुछ गल्लां करनियां ने। अज कुछ खास दिन ने, बड़े इंट्रस्टिंग दिन ने। एक बड़ी शख्सियत है, अज उन्हां दा जन्मदिन है, उन्हां दे बारे गल करांगे। तो वर्ड एक्सप्रैस दे विच एक नवां वक्रा जिहा तुहाडे लई एक वर्ड लैके आए हां असी। तो फिर सैगमेंट होएगा नवीं दिशा। नवी दिशा सैगमेंट दे विच असीं एक इंटरव्यू सुनांगे पेंटिंग दे विच करियर बनाउण वास्ते, एक पेंटिंग आर्टिस्ट दे नाल एक इंटरव्यू। ते उस तो बाद सैगमेंट होएगा टैक टॉक। ते टैक टॉक सैगमेंट दे विच हमेशा हर हफ्ते हर थर्सडे दी तरह अज असीं लैके आए हां नवीं वक्रियां वक्रियां जिहड़ियां टैक्नोलॉजी नाल रिलेटिड न्यूज़, भावें आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस होवे, भावें खेतीबाड़ी नाल जुड़ियां होण, वो न्यूज़ नवीं नवीं तुहाडे लई लैके आए हां।
0: तो बिल्कुल दोस्तों, तुहाडे लई इनफॉर्मेशन भी भरपूर होएगी। जिथे इनफॉर्मेशन होएगी उत्थे नाल नाल एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, तो वो तो आपां तुहाडा करांगे ही करांगे। इसे करके तो युवाणी की रौनक जिहड़ी है बरकरार रहेगी, क्यों, है ना?
1: बिल्कुल जी। तो रितिका, अज एक बड़ी खास शख्सियत का जन्मदिन हैगा आ, भारत की जिहड़ी आज़ादी की क्रांति सी उहदे नाल जुड़ी हुई सी शख्सियत। मैं उन्हां दीआं कुछ सत्रां बोलनियां चाहुंदा, तो उस तो बाद उन्हां बारे कुछ गल करते हैं
0: जी। जरूर।
1: यही पाओगे महशर में जबां मेरी ब्याह मेरा, मैं बंदा हिंद वाला हूँ,

0: यही हिंदुस्तान मेरा, मैं हिंदुस्तान के उजड़े खंडर का एक जर्रा हूँ। यही सारा पता मेरा, यही नामो निशान मेरा, तेरी सेवा में ए भारत अगर सर जाए तो जाए, तो मैं समझूं कि है मरना हयात जाविदा मेरा, तो मैं समझूं कि है मरना हयात जाविदा मेरा।
1: क्या बात है। तो दोस्तों मैनू लगता है कई लिसनर्स जिहड़े होणगे ना, जिन्हां नूं राइटिंग दे नाल बहुत प्यार है, लिटरेचर दे नाल बहुत प्यार है, उन्हां नूं तां पता लग ही गया होएगा क्यों ना बागेश्वर।
0: बिल्कुल
1: तो दस दिंदे आ दोस्तों, अज है जी वीर सावरकर दा जन्मदिन, यानी कि वीर विनायक दामोदर सावरकर जी, जिन्हां दा जन्म होया सी 18 मई 1883 नूं महाराष्ट्र दे नामिक जिले दे विच, जो कि भागुर पिंड विच होया सी। ओह भारत दे आज़ादी दे संग्राम दे विच इक मुख क्रांतिकारी ते लेखक ते विचारक सन। ते जेकर गल करिए तां उहनां दी देशभगती दी भावना उहनां दे विच बचपन तों ही सी, क्यों है ना।
0: बिल्कुल, उन्हां दी जे असी उन्हां दी कहानी देखिए, ते पुणे दे विच जदों अंडर ग्रेजुएट कीती उदों भी उन्हां ने काफ़ी सारे लगभग 200 कॉमरेड इकट्ठे करके, हजे वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट सीगे, मैनूं लगदा उम्र जिहड़ी उन्हां दी उस वेले होएगी 20 साल तो भी घट जां 21 साल, ते उन्हां ने 200 कॉमरेड इकट्ठे करके अभिनव भारत सोसाइटी एक संस्था शुरुआत कीती कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ।
1: बिल्कुल, इस तों अलावा उन्होंने ब्रिटिश सरकार नूं, मतलब उन्हां दे जिहड़े काले पानी की सज़ा सीगी उन्होंने दिती गई सी उन्हां दे वल्लों, ते उन्होंने उत्थे कई साल अपनी जिहड़ी है कैद कट्टी। ते जीवन दे इस हिस्से दे विच उन्होंने अपने जीवन दे हिस्से दे विच देश भगति नूं पूरा बरकरार रखिया कह सकदे आ।
0: बिल्कुल, असीं उन्हां दी ही लिखियां कुछ गज़ल दियां सत्रां हुणे मैं पढ़ रहा सीगा, ते उन्हां ने एक किताब भी लिखी जिहड़ी 1857 दे विच एक रेवोल्यूशन होई सीगी, 1857 च एक म्यूटिनी होई सीगी, बहुत सारे उसनों नाम दिते गए अलग अलग हिस्टोरियंस ने, ते उस दे बारे उन्होंने किताब लिखी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि उन्होंने 1857 दी उस म्यूटिनी नू वॉर दा दर्जा दिता कि एक आज़ादी दा एक बड़ा वड्डा कदम सीगा।
1: बिल्कुल दोस्तों, उन्हां दी जिहड़ी मौत है 26 फरवरी 1966 नूं होई, ते अज उन्हां दा जन्मदिन है, असीं उन्हां नूं याद कर रहे हां। ते मैनूं लगदा है साडे वर्गियां नूं इहो जिहे बहुत अच्छे क्रांतिकारी लेखक, यानी क्रांतिकारी जिहड़े भी साडे इत्थे फ्रीडम फाइटर्स या वॉलंटियर्स हुंदे ने, उन्हां नूं याद करदे रहना चाहिए।
0: बिल्कुल, ते रितिका मैनूं इंज लगता है कि जदों इस तरह कोई जन्मदिन हुंदा है क्रांतिकारी दा, भावें किसे दा भी होवे, तो सानूं जिहड़ी उन्हां दियां खास गल्लां ने, जिहड़ियां उन्हां जिस गल्लां दे नाल साडे अंदर अज भी जज्बा भरदा है, क्योंकि भारत नूं आज़ाद होए 75 साल तो वध हो गए ने, लेकिन अज भी कई गल्लां ने, कई समाज दे विच ऐसे कोड ने जिहड़े अज भी हैगे ने, ते मैनूं लगता है जिहड़ियां ओह गल्लां उन्हां दे जज्बा उन्हां दे जिहड़े काम सीगे सानूं याद कराउंदे ने कि अज भी सानूं ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ
1: ਹਜੇ ਵੀ
0: ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
1: ਜ਼ਰੂਰ।

0: एक वो एक जड़ी मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, वो एक मूल अधिकार है।
1: बिल्कुल, अगर अपन नॉर्मल तौर ते इस दे बारे गल करिए भागेश्वर, तां असी लोग इन्हां नूं नॉर्मल क्यों नहीं मानते इस प्रोसेस नूं, मैनूं तां ये नहीं समझ आती। कई लोग इस नूं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गलत धारनावां दे नाल जोड़ देंगे ने, तो इन्हां धारनावां दे उत्ते खुल के चर्चा करना चाहिए है, तो इस नूं दूर करना चाहिए है, और इस दी सफाई की महत्ता बारे जड़ी जागरूकता फैलानी है ना, इसलिए ये दिन जड़ा मनाया जाता है।
0: बिल्कुल। तो रितिका, मैंने लग रहा जदों मैं स्कूल दे विच सीगा ते उदों भी इस जो टॉपिक हुंदा सीगा टीचर कई बार अवॉइड कर जांदे सी, ते
1: स्किप
0: कई
1: कर
0: बार
1: देंगे सी।
0: स्टूडेंट्स भी, हुण मैं अपने च देखिया ते साडी मुंडियां च गल हुंदी सीगी, असी मजाक करन लग जांदे हुंदे सी, बट बाद च थोड़े सालां दे विच कॉलेज जाके पता लग्गा नहीं, इस चीज़ नूं मजाक दे विच भी नहीं लैणा चाहीदा ते इस चीज़ नूं जिहड़ा है अवॉइड भी नहीं करना चाहीदा। जां समाज दे विच इह धारणावां ऐसियां बणियां होईयां, कई गलत धारणावां भी हुंदियां ने, फिर जदों उस चीज़ नूं जिहड़ा उस बारे ढंग नाल पढ़ाया नहीं जाता तो असी फिर अपने आप गल्लां बनाउने आ, जदों कई बार वो गल्लां जिहड़ियां वो सही भी नहीं हुंदियां।
1: जिवें कि तुसीं दस्सिया कि स्कूल दे विच ये चीज़ जिहड़ी अवॉइड की जाती सी, उवें अगर
0: बिल्कुल
1: आपां गल करिए तां कुड़ियां नूं कई बारी जानकारी देने लई भी बाहरों भी लोग आते सीगे, ते अगर आपां गल करिए अपने टीचर्स दे वल्लों उन्हां दे बारे भी जानकारी दित्ती जाती सी, बट हमेशा जिहड़े बॉयज़ हुंदे सीगे उन्हां नूं बाहर भेज दिता जाता सी
0: बिल्कुल
1: किसी ना किसी कारण करके। बट अज तां बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है, मैं बहुत खुश भी हुंदी हां कई बार देख के कि ये जिहड़ा प्रोसैस है इस नूं बहुत नॉर्मलाइज़ किया गया है साडी जिहड़ी जनरेशन है उस दे वल्लों, ते पर फिर भी कई पेंडू खेत्र या कई जगावां इदां दीआं ने जिथे हले भी इस नूं मतलब कि एक गुप्त चीज़ के तौर पर मनिया जाता, नहीं इस नूं खुल के इस ते गल की जाती, जो बहुत गलत है।
0: बिल्कुल। इस बारी कई बारी ना ऐसियां धारणावां जिहड़ियां पिंडां दे विच, मैं जरूरी इसलिए मैं नहीं कह रहा सिर्फ पिंडां च, शहरां च भी इदां हुंदा है, काफ़ी जगह ते इंज हुंदा है कि जिहड़े लोग ने वो इस नूं मेंस्ट्रुअल हेल्थ नूं या माहवारी नूं अज भी मनदे ने कि एक इमप्योर चीज़ है, एक माड़ी चीज़ है, लेकिन जदों देखो ये शरीर का हिस्सा है, मनुखी शरीर इन्ना खूबसूरत है, इन्निया अंदर जिहड़े मशीन वांग, मशीन तों वी वधिया जिहड़े अंदर इन्ने सारे अंग चलदे ने, इन्ने सारे जिहड़े सिस्टम ने, ऑर्गन्स ने,
1: जी
0: तो वह काम करते हैं, मनुखी शरीर का हिस्सा है कि जिस दे विच जिहड़ी औरतां दा शरीर हुंदा, सिर्फ औरतां ही नहीं होर भी जिहड़े ट्रांसजेंडर ने, कम्यूनिटी ट्रांसजेंडर ने, होर भी जिहड़े जेंडर्स ने, उहनां दे विच भी माहवारी हुंदी है। इस करके सानू इस बारे एक तो पहली गल जागरूक रहना चाहिए, दूसरा जिहड़ा है इस दा कोई हवा नहीं बनाउणा चाहिए, कोई गलत धारणा नहीं बनाउणी चाहिए, साडे
1: बिल्कुल
0: सवाल है तो
1: बिल्कुल
0: पुछे जाण।
1: बिल्कुल दोस्तों, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का मुख सुनेहा तो यही है कि अपनी हाइजीन जी है उसनों बरकरार रखो, तो निजी सफाई का ध्यान रखो। इस तो अलावा यह दिन यही सुनेहा दिता है कि जोड़े पीरियड्स ने वो एक नैचुरल प्रोसैस है, इसलिए इसनों हवा ना बनाया जाए बल्कि इसनों नैचुरल तरीके दे नाल ही बन लिया जाए।
0: बिल्कुल जिदा तुसी कह रहे हो, जो तुसी गल कर रहे सीगे, यही इस साल की थीम है, टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड।
1: तो दोस्तों हुण वेला हो गया एक होर म्यूजिकल ब्रेक का, मुड़दिया दोबारा एक नवे सैगमेंट के नाल।

0: दोस्तों सुन रहे हो तुसी युववाणी 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से। ते हुण वेला हो गया है साडे अगले सैगमेंट दा। ते इस सैगमेंट नवी दिशा दे विच तुसी सुनोगे इंटरव्यू जिस दे विच गल करांगे एक पेंटिंग आर्टिस्ट दा करियर बारे कि एक पेंटिंग आर्टिस्ट तुसी बनना होवे ते उस दे विच करियर किवें बना सकदे हो।
1: नवी दिशा प्रोग्राम लैके असी एक बार फिर हाजिर होए हैं ते आज नवी दिशा प्रोग्राम तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हैं गुर अमरप्रीत कौर हुणा दे नाल जो कि फाइन आर्ट्स नाल जुड़े हुए ने, रंगां दे नाल जुड़े हुए ने, रंगां दे विच जीवन तलाशते ने ते रंगां दे नाल कलाकृतियां दे विच नवी जिंदगी भरते ने। गुर अमरप्रीत कौर जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम तुहाडा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, तुसी मैनू अपने स्टूडियो च बुलाया, बड़े मान वाली गल है। मैं थोड़ा सब दा, थोड़ी पूरी टीम दा धन्यवाद करना चाहती हूँ।
1: सानू भी बड़ी खुशी हो रही है तुहानू मिल के, ते ये भी जानने की बड़ी इच्छा है कि तुसी रंगा दे नाल किस तरह जुड़े हो, कदों तो जुड़े हो, फाइन आर्ट्स नाल तुसी किस तरह जुड़े।
2: मैम मैनू लगता रंगा दे नाल असी शुरू तो ही जुड़ जाने हैं कला दे नाल, जदों असी अपनी होश संभालते हैं तां जे किसी बच्चे नूं देखो तो कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देंदा, चाहे वह दीवारां ते। तो मैनूं लगता मैं भी जो तू होश संभी आ मैं कुछ ना कुछ बनाना शुरू करता सीगा, तो मैनूं बहुत ही शौक सीगा। मैं कभी पेपर्स ते कभी किते, तो एक तरह का मैनूं पता सीगा कि मेरे अंदर कुछ इवें दी चीज़ आ जो मैं कला दे जरिए ही प्रगट कर सकती हाँ
1: जी। बाकी तुसी सही कहा, जदों असी सारे बच्चों नूं देखते हैं तो बच्चों के लिए रंग बिरंगे खिडौने होंगे ने, रंग बिरंगे खाने होंगे ने, रंगा के लिए बड़े अट्रैक्ट होंगे।
2: छोटे छोटे खिडौने बना के देने, कुर्सी मेज, तो मैं उन्होंने कलर करती सी। मैं लगता से उन्होंने कलर भरन देना उन्होंने जान आ जाती है। दादा जी ने बोलना की नहीं इन्हों पॉलिश कर दे ज्यादा सोहने लगन गए, तो मैं लगता नहीं ये कलर करके इन्हां दे विच एक खिड़ा जिहा आ जांदा, ये मैनूं ज़्यादा सोहणे लगदे ने। तो मैं लगदा मेरी पहली कलाकृति जिहड़ी कह लो उही सीगी जिहड़ा उन्हां नूं रंग करना।
1: ठीक है, मतलब तुसी कह सकदे हो कि तुहाडे दादा जी ने एक तरह नाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुहानूं प्रेरित किया।
2: हाँ जी।
1: ठीक है जी, ते फिर उस तो बाद परिवार दा सहयोग किस तरह दा रहा कि तुसी जदों रंगां नाल जुड़ गए या पेंटिंग नाल जुड़ गए?
2: मेरे मैम ताया जी सीगे, ओह बहुत सोहने स्कैचिंग करदे सीगे, ते मैं जदों भी उन्हां कोल लुधियाने जाना, ओह वाटर डिपार्टमेंट दे विच सीगे, ते उन्हां नूं ड्राइंग दा बहुत शौक सीगा, ते मैं उन्हां दे जा के पेंटिंग्स नूं देखना, ते घरे आ के मैं बनाने दी कोशिश करनी सेम कोई स्कैच बनाना, मम्मा दा स्कैच बनाना, पापा दा। तां पापा ने कहना तूं अपने ताया जी तों सिख, ओह बहुत सोहना बनांदे। तो मैनूं इस चीज़ का तो पता चल गया सी कि सिखिया भी जांदा आ, बट सीखना किवें आ इस चीज़ का नहीं पता सीगा। तो जर्नी मेरी उतों ही शुरू हुई है, और फिर मैं स्कूल दे विच चले गई, स्कूल दे विच जिवें चार्ट्स बनाई देने बी हैप्पी लिखता ठीक है इवें दा कुछ लिख के मैं नाल उहदे कोई ड्राइंग कर देनी, तो हौली हौली ना हर क्लासरूम दे विच मेरा एक चार्ट लग्गिया हुंदा
1: सी। मतलब कि तुसीं अपनी आर्ट दे नाल स्कूल नूं सजाउणा शुरू करदे?
2: स्कूल नूं सजाउणा शुरू करता। ईवन मैनूं टीचर्स ते वी कहिणा साडे घर लई वी कोई चार्ट बना दे, मैं उहनां नूं वी चार्ट बना के देने जिवें।
1: ठीक है, ते स्कूल दे विच या फिर उस तों बाद तुसीं इस दी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग वी लई है?
2: नहीं मैम मैनूं नहीं पता सीगा, मैनूं लगदा सी कि पिंडां च मोस्टली पता हुंदा जां डॉक्टर बनना जां इंजीनियर बनना, तां मैं नॉन मैडिकल दे विच प्लस वन प्लस टू कीती, तां मैनूं नहीं मैनूं लगदा सी आर्ट वी जो करदे नहीं ओह शायद वकील बनना जां उहदे लई हुंदा, ज़्यादा स्टडी नहीं करी, तां मैं नॉन मैडिकल वाली लाइन दे विच चली गई। उस तों बाद मैं BCA कीती, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिर मैं जलंधर DAV इंजीनियरिंग कॉलेज तो ही मैं MCA कीती, तो उस तों बाद मैं बैंक दे विच वी जॉब कीती, HDFC बैंक दे विच।

यू जिंदगी, लव यू जिंदगी ते लव यू जिंदगी कहना ना बहुत बहुत बहुत आसान है, पर असी कहंदे नहीं आ। देखो हुण देखो 6:04 हो गए ने, ते शाम दा समां ना दोस्तों थोड़ा जिहा अजीब हुंदा है, थोड़ा जिहा स्पैशल भी हुंदा है। पूरा दिन काम करदे करदे बंदा थक जांदा है, ते हाँ ये भी सोचता है कि हुण अगे की करना है। किसी ने ऑफिस च मीटिंग संभालियां हुंदियां ने, किसी ने शॉप ते कस्टमर्स, ते किसी ने घर दियां जिम्मेदारियां। पर हुण बस कुछ पल अपने लिए भी होने चाहिए ने ना, एक कप चाय, हल्की जी मुस्कान, ते साडे नाल थोड़ियां जिहियां गल्लां, बस इन्ना ही काफ़ी हुंदा है मूड फ्रैश करन दे लई। ते तुसी देखो गर्मी इन्नी ज़्यादा, तुसी आइसक्रीम भी खा सकते हो अपना मूड लाइट करन दे लई। ते हुण तुहाडी इस शाम नूं होर ज़्यादा सुकून भरी बनाउण दे लई सुनते हाँ एक खूबसूरत जिहा गीत जिहड़ा तुहाडे मूड नूं होर ज़्यादा लाइट बना देगा। तो चलो बने रहो महक दे नाल, ते प्रोग्राम इंजॉय करो। लव यू जिंदगी।

सूरज फिखा गया मुझे, हाँ दिन के बाद उड़ना है मुझे, थक जाऊं चाहे जितना भी सफर में, फिर भी हिम्मत से बढ़ना है मुझे। कितनी प्यारी गल है ना कि दिन चाहे गुजर गया लेकिन साडे अंदर दी जिहड़ी चिंगारी है ना, जिहड़ी अग है, जिहड़ी सानू कहंदी है कि नहीं तू रुकना नहीं है, तू हर दिन अगे वधना है, भावें तेरे राह दे विच जिन्ने मर्जी रोड़े आन, भावें जिन्नी मर्जी रुकावट आन, लेकिन तू झुकना नहीं है, तू रुकना नहीं है। ते अज दी शाम असी अपनी सोच नू भी रुकण नहीं देना, असी झुकण नहीं देना, असी ये नहीं सोचना कि असी कुछ कर नहीं सकते, असी बहुत कुछ कर सकते हैं, तुसी अपनी सोच तो भी ज़्यादा कर सकते हो, बस तुहानू यकीन करना पएगा अपने आप ते, अपनी सोच ते, अपने हुनर ते।

0: के नाम तेरा।
1: सच्ची मैं लवली हो गई यार ना पढ़ के, क्योंकि अगले एंकर स्टूडियो दे विच आ गए ने ते तुहानूं एंटरटेन करन दे लई बैठे ने। मैं तुहाडी अपनी दोस्त महक ते टाइम देखो काफ़ी ज़्यादा हो गया, हुण मैनूं जाना पएगा। सानूं ना कहो अलविदा, सिर्फ दिओ इजाज़त, क्योंकि तुहाडे नाल गल्लां बातां करन दी सानूं पै गई आदत। फिलहाल रात हले बाकी है, तुहाडे नाल साडी गल्लबात हले बाकी है। तो चलो जी, मिलते हैं किसी होर दिन नवीआं गल्लां बातां दे नाल। बाय बाय।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड इवनिंग दोस्तों। शाम के 7:03 हो चुके हैं एंड काफ़ी चिरां तो बाद शाम के इस प्रोग्राम दे विच मैं दोबारा एंट्री लई है। सो हाँ जी, फिर स्वागत मैं अपना आप ही कर लेना दोस्तों। शाम के 7:03 एंड जिवें कि तुसी जानते ही हो कि इस टाइम ते FM रेनबो हाजिर हो जाता है प्रोग्राम लैके फिल्मी दुनिया। एक ऐसी दुनिया जिथे असी फिल्मों के सितारों की जी गल है करते हैं। सो अज का सितारा बड़ा ही खास

क्या खत्म न होंगे कभी ये गम के फसाने, फुरकत के जमाने। क्या खत्म न होंगे कभी ये गम के

जी आवाज़ दे कहाँ है, खूबसूरत गीत जो कि तुसी सुनिया, अंदाज मूवी जो कि 1970 सॉरी अनमोल घड़ी मूवी जो कि 1946 दे विच रिलीज़ हुई सी इन्हां दी, ते उस मूवी दा गाना तुसी हुणे सुनिया। बट यस अगली फिल्म जिहड़ी है वो अंदाज मूवी जो कि 1949 दे विच आंदी, जिहदे विच दलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब अते नरगिस जी ने काम कीता, ते असी कह सकते हैं कि बॉलीवुड दे पहले मॉडर्न लव ट्राइंगल ड्रामिआं विचों एक ड्रामा, एक बहुत खूबसूरत ड्रामा जो कि महमूद खान साहब ने आज़ादी तो बाद दी फिल्म जिहड़ी है वो बनाई, जो कि लोगों नूं खूब जिहड़ी है वो पसंद आई।

जी जिन्हियां फिल्मां महमूद खान साहब ने बनाइयां, जिस दौर दे विच बनाइयां, उन्होंने फिल्मां दा दौर ही बदल दिता। क्योंकि जिन्हियां फिल्मां दी मैं गल कर रहा हूँ, जिवें सब तो पहला फिल्म उन्हां दी आउंदी है 1940 दे विच, सॉरी 1935 दे विच आउंदी है। उस तो बाद 1940 विच एक मूवी होर आउंदी है औरत। इस फिल्म गरीब किसान महिला की जिंदगी दे उत्ते फिल्म जिहड़ी है बनती है, तो बड़े वड्डे पद्धर ते उसका कहो कि लोगों ने स्वागत किया। फिल्म दे विच उन्हां दा नाम मदर इंडिया भी रखे एंड काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली समाजिक फिल्मों विचों एक फिल्म जिहड़ी है यह गिनी जाती है। उस तो बाद 1946 दे विच एक होर खूबसूरत फिल्म जिसके गाने मैं हुणे पहले प्ले कर रहा सीगा, अनमोल घड़ी, जो कि 1946 दे विच आती है, एक संगीतमई फिल्म जिस विच नूर जहां दे गीत मशहूर है। इस फिल्म ने महबूब खान नूं वड्डे कमर्शियल डायरेक्टर वजों स्थापित किया। नो डाउट कि उस फिल्मां दे विच जदे एक्ट्रेस ने एक्ट्रेस नूं तां एक चंगी वाह वाह जिहड़ी है मिली ही, डायरेक्टर नूं भी मिली, क्योंकि डायरेक्टर दी सोच कि कित्थे किहड़ा गाना कदों किवें किद्दां इंट्रोड्यूस करना है, वह भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। शायद यही गल सी कि उस तो बाद बहुत सारिया फिल्मों के इन्हों का योगदान काबिले तारीफ रहा। 1952 दे विच अगली फिल्म आती है आन, भारत दियां पहलियां टेक्निकल भारी पद्धरी फिल्मां, यानी कि महबूब खान एक ऐसे डायरेक्टर रहे ने जिन्होंने विदाउट टेक्निकल सपोर्ट भी फिल्मां बनाईयां। एंड उस तो बाद यकीनन आज़ादी तो बाद जदों टेक्नोलॉजी ने भी काफ़ी तरक्की की, तो वर्ल्ड वाइड जिहड़ा कोलैबोरेशन है वह होना शुरू होया। उस तो बाद भारत की पहली जी टेक्निकल भरपूर फिल्म रही है आन 1952 दे विच आती है, जिहदे विच एक मैसेज चला गया वर्ल्ड वाइड कि हाँ इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ भी जिहड़ियां ने ओ हॉलीवुड नूं टक्कर दे सकदियां ने।

जी हाँ, फिल्म मदर इंडिया जिसने शायद बॉलीवुड दे विच इन्नी ज़्यादा सक्सेस की थी कि सिर्फ भारत तक इस दे चर्चे नहीं रहे, हॉलीवुड तक चले गए। जी हाँ, पहली फिल्म भारतीय फिल्म जो कि ओस्कर दे लई नामजद हुई सी, जिसने फिल्म फेयर बेस्ट अवार्ड जितया, महबूब खान साहब नू बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिलया, फिर भारतीय सिनेमा दियाँ सब तो महान फिल्मों विच शामिल हो गया। इस फिल्म के काफ़ी सारे डायलॉग्स जोड़े ने जो बड़े फेमस हुए, जिमें कि एक डायलॉग सेगा इंसाफ सब तो उपर है, जो कि राधा का किरदार निभा रही जी भारतीय माँ है उसका डायलॉग है।

क्या बात है, फिल्मा दी फिल्मा, गाने भी एक तो एक खूबसूरत महमूद खान जी दी फिल्मा दे। मैं दसवां कि उन्होंने सन्मान जड़ा है किया गया, पद्म श्री ना सन्मान किया गया 1963 दे विच, फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, नेशनल अवार्ड्स मिले एंड अकेडमी अवार्ड नॉमीनेशन फॉर मदर इंडिया भी मिले। इस अलावा उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच एक गरीब बच्चे नू भी गोद लिया जो कि शायद बहुत लोग नहीं जानते, ते जो कि अगे जाके एक अदाकार बनया जिंदा नाम सीगा साजिद खान। होर भी इन्हां बारे कुछ इंट्रस्टिंग फैक्ट्स ने जो कि मैं अगले इस गीत तो बाद दसना चाहवांगा, पर मदर इंडिया बारे खास गल कि कहिंदे अज भी जदों भी मदर इंडिया की गल हुंदी है महबूब खान का नाम जिहड़ा बड़ा सत्कार नाल लिया जांदा है, क्योंकि वह फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट परपस लई नहीं सी, वो एक

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निर्देश

खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सह जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

अजी को फिर स्वागत है जी प्रोग्राम मस्त जंक्शन बाय मोहित रूपल एंड लोरी वालों भी। हेलो हेलो हेलो हेलो दोस्त, प्रोग्राम विच थोड़ा फोन मिल चुका है, गलबात करिए। हेलो दोस्त भैया, डी स्लो पे बोलन देने, दोबारा मौका देने फोन मिला के प्रोग्राम से शामिल हो, फटाफट तुसी फोन मिला सकते हो 0181 23 42 174 0181 23 42 174। मैं तो कहूँगा कि अब वाहवा लोगों का फोन मिल सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग मसरूफ ने, क्योंकि अब बहुत सारी थावां दी शबील लगी सी ते हजे भी शायद उधर ही होंगे। बाकी प्रोग्राम दे विच तुसी जिहड़ी है गलबात मेरे ना करो एंड लैट्स सी, है ना, लैट्स सी कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਲਾ ਲੋਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲੋਰੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ, ਲਾਲਾ ਲੋਰੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ ਐਂਡ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਲਾਲਾ ਲੋਰੀ ਨਾਲ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੋ ਜਾਓ।

वंस अगेन लेट वाली गुड इवनिंग दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड जिंदगी जिंदाबाद। रात के 9:03:39:41 हो चुके हैं। एफ एम रेनबो से प्रोग्राम शुरू हो चुका जिसका नाम है जी दिल चाहता है। एंड इस प्रोग्राम के जिमें कि मैं पहला भी हमने 2 मिनट पहला अनाउंस किया, मैं फिर कर रहा कि तुसी किसी भी हिंदी या पंजाबी फिल्मों के गीतों की फरमाइश जी तुसी कर सकते हो। तो सानू बस तुसी मैसेज भेजना साढ़े वट्सअप नंबर 9855101027 से 9855101027 से। बहुत सारे दोस्त सानू जिहड़े ने ओ मैसेज भेजते हैं इस प्रोग्राम दे विच, सो तुसी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। तो लाइव चल रहे इस प्रोग्राम दे विच लाइव सानू मैसेज भेज के अपनी लाइव फरमाइश जी पूरी करवा सकते हो। चलो जी दोस्तों का जिहड़ा प्यार ते मैसेज भेजने का सिलसिला जिहड़ा है शुरू हो चुका है, आओ शुरू करते हैं हुण प्रोग्राम नूं। सब तो पहले मैसेज आता है पिंड वड़िंगखेड़ा जिला श्री मुक्तसर साहब तो भोला सिंह सिद्धू, लाडी धालीवाल, जलंधर तो मास्टर मोहन लाल चौंकी, अरविंद कुमार, गायिका सुंदर कौर, प्रकाश कौर जी का गीत जरा है बाज सट्टा। जनाब अगर फिल्म पता है तो फिल्म का नाम लेके दस दो, मैं जरूर गाना जरा है प्ले करा। थैंक यू सो मच फॉर फरमाइश। अगली फरमाइश या अगला मैसेज सू आया जी, ईद मुबारक जी, तो हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान तो सू मैसेज भेज रहे हैं रजाक मुहम्मद, समीम बेगम, मैन इमरान खान, इरफान खान, सभी को ईद मुबारक, थैंक यू सो मच। तो अगे वद्दियां जी, मैसेज सू आया है लिखा फिल्म शागिर्द बोल दिल विल प्यार वा

और मैं क्या जानू रे, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। दिल विल प्योर व्योर, मैं क्या जानू रे दिल विल। ओके जी, मैनू गाना नहीं मिलया। कोई गल नहीं, फिल्म दे नाम तो लभ लेने आ। फिल्म दा नाम है जी शागिर्द। ओके जी, सो ये रही ये फरमाइश, ये रहा ये गाना। और दो तीन मैसेज और पढ़ लेते हैं। अगला मैसेज है, सत श्री अकाल, नेम सोनू एंड मास्टर मोहन लाल, विलेज कुका तलवंडी, ते थैंक यू सो मच सानू मैसेज भेजने के लिए। अगला मैसेज सर तक पहुंचे है, मैसेज भेजा लिखे चक 14 PSB तो कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरन गोरा, जंसीर मनु, लवजीत गंगू की ओर से नमस्कार जी, किसी भी गीत में शामिल करो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, तुहानू शामिल कर लिया गया जी, बहुत बहुत मुबारक। अगला मैसेज आया, सत श्री अकाल, सॉन्ग बड़े बेवफा हैं ये हुसन वाले। मूवी रूप तेरा मस्ताना, सिंगर मोहम्मद रफ़ी। और रिक्वेस्ट भेजी है गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा हरियाणा से, राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा। ठीक है जी, फिलहाल मैं शागिर्द मूवी का जरा गीत है, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, बट FM रेनबो चंगी तरह जानता है। इस करके थोड़ियाँ फरमाइशा भी प्ले करता है प्रोग्राम, दिल चाहता है दे विच, फटाफट तुसी प्रोग्राम दे विच मैसेज भेजो। सो व्हाट्सएप नंबर है 9855101027।

जी एंजॉय करे प्रोग्राम, दिल चाहता है यो, दिल विल प्यार प्यार, मैं क्या जानू रे, जानू रे जानू, बस इतना जानू तुझे अपना मानू रे। ये सारे दोस्त जो हमें मैसेज भेजते हैं, ये सभी के दिलों के जज्बात हैं जो कि आकाशवाणी एफएम रेनबो को लिख रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। समा हो चुका है रात के 9:11, ओके जी 21:11 हो चुके हैं। लो जी हुण जनाब ने सारे मैसेजेस सारे अज ही कर देने ने। ओके जी अगला मैसेज सर तक पहुंचया है, लिखा है नमस्कार जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। आवाज़ लता मंगेशकर, फिल्म अपना देश, सिरसा हरियाणा से हिमांशु सेठी, शेफी सेठी, नैन्सी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज, सत श्री अकाल जी, वाहेगुरु तुहानूं राजी रखे, गर्मी तो सब बचे रहो जी। चंडीगढ़ सतीश नेजा, विमला नेजा, शिफाली, शेफी, मास्टर डेविस, गीत राजा ना जा नौकरी छोड़ के, आवाज़ लता मंगेशकर, फिल्म चर्स, धन्यवाद जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज सड़क तक पहुंचा है, पदमपुर जिला, श्री गंगानगर राजस्थान, सो मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, मूवी काला पत्थर और ट्रैक बाहों में तेरे मस्ती के घेरे। ओके जी, सो गुड इवनिंग जी। अगला मैसेज आया जी, सोनू रविराज, गुलशन लकी, बलदेव नगर, जंदर सिटी तो, मूवी धर्म अधिकारी और ट्रैक जब लड़की सिटी बजाए। ओके जी, सब प्रेम नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, गीत दुनिया का मेला, मेले में लड़की, लड़की अकेली, शनो नाम उसका है। लग रहा है कि अनाउंसमेंट हो रही है कितने, फिल्म राजा जानी और भेजा है मैसेज, नाव नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, वेद मिड्डा, अलका मिड्डा थे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज हर तक पहुँचे है जी, प्रेम पूर्वक नमस्कार, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से, श्री सुधाकर राजे यादव, श्री प्रशांत राजे यादव, कुमार सचिंत वायाल कुमार, प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख कुमार, सर्वत देशमुख कुमारी, सानवी देशमुख कुमारी, कल्पना देशमुख, समस्त राजे यादव देशमुख वायाल परिवार, फिल्म कुर्बानी, गायक किशोर कुमार और अनवर, बोल कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। ठीक है जी, इस गीत चला दें क्योंकि दोस्त होर भी जेडे ने सिमिलर फरमाइश जी कर रहे थे, तो लो जी सुनते हैं इस गीत, प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच।

जी इंजॉय करे प्रोग्राम दिल चाहता है एंड दिल चाहता है दे विच बहुत सारे दोस्त प्यारे प्यारे सानू फरमाइशा भेज रहे ने मैसेज भेज रहे ने। अगला सानू मैसेज आया लिखे कार्यक्रम दिल चाहता है आपका हर पल खुशियों से भरा हो फिल्म चोर मचाए शोर और ये फरमाइश भेज रहे हैं सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गावे मल्होत्रा भाई सुच्चा सिंह पाठक को दुआओं में हमेशा याद रखना जी। बिल्कुल जी एफ एम रेनबो नाल जुड़े सारे या नहीं भी जुड़े सारे लोगों नू असीं हमेशा दिलों प्यार ते दुआवां ही दिंदे आ क्योंकि सानू दुआवां ही मिलदियां। आदरणीय प्रसारक महोदय जी प्यार भरा नमस्कार फिल्म आज और कल और फरमाइश हमें भेज रहे हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवहाकर निर्मला नवहाकर विशाल नहावकर और मलकापुर से नारायण इंगले सोपान ताइडे और आशीष मुरहेकर। थैंक यू सो मच मैसेज भेजने के लिए। अगला मैसेज है प्रोग्राम दिल चाहता है प्रसारक नू सत श्री अकाल फिल्म लाडली गीत सानू बुक नाल पानी दे प्यादे घुट नहीं तेरा जूठा कानू करिए गिलास कोरीए क्या बात है जी। हूँ पंजाबी फरमाइश आईए तो आपी फरमाइश लभदे हैं लाडली दा लाडली दे फरम स्पैलिंग हूँ लाडली ओके लभ गई ए लिखा जी तुम्हारे बुलाने को जी है हूँ शायद आही हो ज़्यादा वधिया ठीक है जी। पिंड नथाणा पंजाब तो हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी तो सीता और गीता खुश रहो खुशियाँ वंडो सुना दो जी पता पता कुछ मीह पै जाए ओके जी ओके। वैसे मौसम विभाग ने कहा होया है कि शायद अज या कल मीह जड़ा है वह पैना है सो सारे ख्याल रखियो। अगला मैसेज है आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार आदरणीय प्रसारक जी आप हमारी फरमाइश किसी भी गीत के साथ शामिल करें आपका तहे दिल से शुक्रिया ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साहब राही मेहराज जहां आजाद नगर लक्ष्य हरिद्वार से। अगला मैसेज है जी नमस्कार जी फिल्म यादव की बारात गीत यादव की बारात निकली है मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा मलिक माही मलिक ठीक है जी थैंक यू जी। अगला मैसेज गीत वो है हाँ जी संगीत वो है जब किसी के सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज साहिब बजाज बेटा बजाज ठीक है जी थैंक यू। अगला मैसेज कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक करण गीतू निहारिका हार्दिक वंश बत्ता फिल्म मोहरा गीत टिप टिप बसा पानी। लो जी लाडली फिल्म का गीत मेरे सामने पहुंच चुके हैं असी इन्हों सुनाने थोड़े सारे दोस्तों के लिए आओ इंजॉय करो इस गीत नू एंड तुसी भी सानू व्हाट्सएप मैसेज भेजो 9855 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10 9 8 55 10 10

जी सबसे जुदा है एफएम रेनबो, इसलिए सारे इस पर हैं फिदा और इसीलिए भेज रहे हैं इतने सारे मैसेजेस। जी हाँ, प्रोग्राम दिल चाहता है में आप भी शामिल हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9855101027, है ना 9855101027। लो जी अगे बढ़ते हैं। आगे साढ़े को मैसेज पहुंचा है, लिखा है, बहुत लंबा मैसेज है। प्रोग्राम दिल चाहता है, आदरणीय कार्यक्रम प्रसारक जी, सलाम में मोहब्बत कबूल हो। दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल बड़वाल, लखवीर रानो, कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल, प्यारे बेटे चटकू मटकू जी, कृपया आप हमें फरमाया जरूर पेश करना जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हमारी पसंद ये रही और थैंक यू सो मच जी। ओके जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आगे मैसेज आया जी, लिखा है मैसेज, गाने के बोल, हाल क्या है दिलों से ना पूछो सनम, आवाज किशोर कुमार, फिल्म अनोखी, अदा मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, शुभम धीमान, आंचल कुंज पर प्रवीण एंड चिराग दज्जत राजेश धीमान। सर जी नमस्कार, दिल चाहता है बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपकी मीठी आवाज में ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है, इसी तरह से हमारा मनोरंजन करते रहें, हम आपकी पसंद प्रशंसा करते रहेंगे क्योंकि आप प्रशंसा के लायक हैं। थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट। आगे बढ़ते हैं, मैसेज आया, फिल्म बादल गीत के बोल, ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार ना हो जाए, अरे ये बड़ा प्यारा गाना, ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार ना हो जाए। जी हाँ, ओके जी, ये गाना गाया है सोनू निगम और कविता कृष्णामूर्ति जी ने, थैंक यू सो मच, ये फरमाइश भेजी हमें। दातार सिंह शेखावत, संगीता कुंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। ओके जी, अगला मैसेज, करणवीर हाउस पुच्चो कैंचियां बठिंडा पंजाब से, नमस्कार जी, परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन, अभिजोत, किसी में गीत में शामिल करो। ओके जी, अगला मैसेज, सर जी नमस्कार, सर जी बहुत समय बाद मैसेज प्रोग्राम में भेज रहा हूँ, कृपया किसी भी गीत में शामिल करें, उम्मीद है शामिल किया जाएगा, डेफिनेटली किया जा रहा है, मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, शुक्रिया धन्यवाद, थैंक यू जी। अगला मैसेज आया है, मिस्टर इंडिया, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फरमाइश में भेज रहे हैं, मुक्कम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंडरपुर, जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुभान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर और चाचा और चाची और पूरा मुलानी परिवार। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर दी फरमाइश। अगला मैसेज, धरनीय जी, आदाब जी, आपके सभी प्रोग्राम बहुत ही सुंदर होते हैं जी, फिल्म आंखें मिलती हैं जिंदगी में, मोहब्बत कभी कभी ये सुनाएं।

और श्रोता हैं जय विहार नजफगढ़ से, शाहरुख, फारूक, शबनम और शहनाज। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फिलहाल हमें ये जो फरमाइश आई है बादल फिल्म की, इनका जो गाना है ना मिलो कहीं प्यार ना हो जाए।

मेरे गाने के बोल है कि ना मिलो कहीं प्यार ना हो जाए। नहीं नहीं, मैं इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कि हाँ मिलो, पर मिलो एफएम रेनबो को, मिलो आकाशवाणी को, क्योंकि इतने सारे दोस्त अगर हमें मैसेज भेज रहे हैं तो भाई उस प्यार में भी मजा तो होगा ही। ओके जी भाई, मैं ना हिंदी चा चल जाना क्योंकि सारे मैसेज ना हिंदी चाहिए होंगे ने। खैर प्रोग्राम तुम इंजॉय करो जिस नाम दिल चाहता है, दिल चाहता है तो होर लोगों का दिल की चाहता है सू मैसेज भेज रहे हैं। आओ पढ़ते हैं इन्होंने प्यारे प्यारे मैसेज। लिखा है सर प्रेम नमस्कार जी, किसी भी किस में शामिल किया जाए, गाँव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी, शगुन और आपका हर पल खुशियों से भरा रहे। इन्होंने लिखा है, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज प्रेम पूर्वक आदाब, गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सर आजिया, आफिया, इब्राहिम सदाम, अदीब हसन, एनी सॉन्ग अपनी पसंद में। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड आपको भी ईद मुबारक। अगला मैसेज है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वरण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुरलाल, अविराज और पोत्रे गुरनूर सिंह एंड शुभदीप सिंह। फिल्म कभी कभी और गीत के बोल तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। अरे क्या बात है। ठीक है जी, अगला मैसेज गुरमीत सिंह मीन साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो, थैंक यू जी। अगला मैसेज मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, लिखा है हमारी प्लेलिस्ट में से किसी भी गीत या किसी भी अन्य सदाबहार गीत में हमें शामिल करें, फिल्म कोयला और ये वो। ठीक है जी, कुछ अलग सा कोई गाना हो तो मैं ज़रूर करूँ। कोयला तो नहीं, क्रिमिनल नहीं, सदमा का लगा लेते हैं। ये गाना बहुत ही खूबसूरत है। जिंदगी गले लगा ले। ओके जी, ठीक है जी, आपकी फरमाइश आज फाइनली काफी दिनों के बाद पूरी कर ही दी। अगले मैसेज सुप्रीम नमस्कार, सत श्रीकाल, कार्यक्रम दिल चाहता है, फिल्म आओ प्यार करें और ये फरमाइश भेजी है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। अगले मैसेज पहुंचे नमस्कार सर जी, मैं सुषमा तालीवाल जलंधर तो, सर इम्तिहान मूवी का सॉन्ग लगा दीजिए, चुरा के दिल को जा रहे हो। ओके जी, ठीक है जी, फिलहाल इंजॉय कर रहे हैं मूवी सदमा का इस गीत नूं ते टाइम अप करेगा गया सिर्फ 20 मिनट। फटाफट प्रोग्राम सानू मैसेज भेजो, साडा व्हाट्सएप नंबर है 9855101027।

लो जी, ये जिंदगी गले लगा ले, जिंदगी इज इक्वल टू FM रेनबो। एंड यस, FM रेनबो गले लगा ली थी यार, क्योंकि सी भी लगाया है, अद्रो सी लगा रहे, अद्रो तो सी लगा लिया, गया बात है। ओके जी, अगला मैसेज आया जी, सुखदेव सिंह, नरेंद्र कौर, सनी मुनि काका, बिट्टू लाटी मोन मास्टर, जनक नगर जलंधर तो लिख रहे फिल्म स्वर्ग, एंड लिख गया मोहित रुबल जी, क्या बात है, क्या बात, थैंक यू जी, थैंक यू। अगला मैसेज, एनी सॉन्ग टू रीड आउट माई नेम प्लीज आदे जी, फ्रॉम नेम हितेंद्र दास, स्टेट असम। ओके जी, थैंक यू जी। गाँव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, प्रमीला ढुकिया, ज्योति सरिता तमन्ना, सचिन विष्णु शिवम ढुकिया, कोई भी गीत सुना दीजिए। ओके जी, धन्यवाद। अगला मैसेज है, नमस्कार रिस्पेक्टेड हो, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन टिकेस्ट्रो, रोजी टिकेस्ट्रो, पर्ल टिकेस्ट्रो, वालिस डिकेस्ट्रो, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज आया है, प्रीतम सिंह, पंकज अरोड़ा, संदीप सिंह, अमरजीत कौर, सरोज एंड मोनिका, बस्ती लाडू वाली, फिरोजपुर, सिंगर एमी वर्क। ओके, अगला मैसेज है, पिंड हीरा वाली, जिला फाजिलका तो पक्के श्रोता, सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदू पार्वती, हिमांशु गुदारा, सत श्रीकाल जी, प्रोग्राम दिलचस्प लाइव सुन रहे हैं, रात की सवा का प्रोग्राम पहली पसंद बन गया, अज हो सके तो दो लच्छियां फिल्म का कोई भी गीत जरा सुना दो। ओके, दो लच्छियां, ठीक है जी, ओदा मैं गीत सुना देवा तुहानू, मैं भावें बोल तो भावें ना बोल, शमशाद बेगम जी का बड़ा खूबसूरत गीत, आओ इंजॉय करते हैं इस प्रोग्राम।

खामागण सर, खामागण जी, खामागण आप सभी को। अगला मैसेज, हेलो सर, दिल चाहता प्रोग्राम, नमस्कार, आई एम रविंदर फ्रॉम जलंधर, सॉन्ग मिस्टर नटवाला फ्रॉम एनी सॉन्ग। ठीक है जी, अगला मैसेज, यानी सॉन्ग पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक, कैथर हरियाणा से, मधु नायक, फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं इस गीत नू जो कि है फिल्म दूजा व्याह से, आवाज़ दिती है दिलरा।

मैं प्ले करन जा रहे हैं, जो कि फिल्म शायर, पंजाबी फिल्म शायर, जिस तो अदाकारी विच जिन्हां ने सतिंदर सरताज जी ने निभाई, तो उन्होंने ही गाने गाए इस फिल्म दे, लिखे भी उन्होंने। सो इन्हां दे गीत दे नाल प्रोग्राम दे विच मैं तुहाडे कोल लवांगा विदा। उम्मीद करदा कि तुसीं प्रोग्राम खूब पसंद कीता होएगा, इंजॉय कीता होएगा। सो ठीक है जी, थैंक यू सो मच, लेट्स इंजॉय दिस सोंग, एंड जाना कितने ठीक 10 बजे अगला प्रोग्राम असी इंजॉय करांगे।

0: आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। कि बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, रात दे पूरे 10:01 हो चुके ने, एन एफएम रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है जी शामे गजल। एंड अज दे प्रोग्राम दे विच स्टार्टिंग तो पहला जिहड़ी मैं एक गजल दियां चार लाइना पढ़िया ने, वो लाइना ने बशीर बदर जी दियां, जिन्हां नूं अज असी सदीवी कह लो कि विछोड़ा साडे कोल लै चुके ने, सानू हमेशा लई अलविदा आ गए ने। एंड भारत दे प्रसिद्ध, दुनिया दे विच प्रसिद्ध उर्दू शायर ते साहित्यकार बशीर बदर जी, जो कि अपनी सोहनी 91 साल की उम्र जिहड़ी है हंडा के गए ने। पर एक आर्टिस्ट जो जांदा है तां दुख तां लगदा ही, क्योंकि उन्होंने पिछे बहुत कुछ सानूं सिखाया ते बहुत सारियां गज़ल्स उन्होंने लिखिया, जो कि अज दे प्रोग्राम च मैं कोशिश करांगा उन्हां दी गज़ल्स नूं प्रोग्राम दे विच मैं शामिल करा। सो इस प्रोग्राम दे विच तुसी भी शामिल हो सकते हो। अगर तुसी बशीर बदर साहब की कोई भी पोएट्री, कोई भी गज़ल जो तुसी पसंद करते हो, तो तुसी भी सानू मैसेज जिहड़ा है भेज सकते हो, ते असी उस मैसेज नूं प्रोग्राम दे विच जरूर शामिल करांगे। बस बशीर बदर जी दी ही वो लिखी होनी चीज़ चाहिए है।
1: बहुत सी फरमाइशें हैं कि शराब के ऊपर कोई गज़ल सुनाई जाए। खैर गज़ल तो नहीं, मैं शराब पे आपको एक जोक सुनाता हूँ। मियाँ बीवी थे, सुबह का वक्त था, ताज़ा ताज़ा अखबार आया था, तो बीवी उनको अखबार पढ़ के सुना रही थी और मियाँ को रात का हैंगओवर था, तो अखबार में शराब के ऊपर बहुत सी बातें लिखी थी और वो उनको पढ़ के सुना रही कि देखो कितना नुकसान होता है शराब पीने से, कितनी बुरी चीज़ है। तो वो सुनते रहे और थोड़ी देर के बाद बोले ठीक है कल से बंद कर देते हैं। तो बीवी बहुत खुश हुई, चलो कल से शराब बंद कर देंगे। लेकिन जो दूसरे दिन सुबह हुई तो देखा कि अखबार बंद हो गया। लीजिए गजल पेश कर रहा हूँ। जो लोग 50 से ऊपर हैं और शराब पीते हैं उनके लिए

जी दोस्तों, इंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम शामी गज़ल। अज असी बशीर बदर जी दी गज़ल्स नूं पढ़न दी कोशिश कर रहे हैं। अगे बड़ी खूबसूरत गज़ल दे शेर ने कि अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो, ना जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो, मकान खाली हुआ है तो कोई तो आएगा। कि मैं अपनी राह में दीवार बनकर बैठा हूं, मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूं, अगर वो आया है तो किस रास्ते से आएगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा।

ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। उजालों की परियां नहाने लगी, उजालों की परियां

नहाने लगी, नदी गुनगुनाई ख्यालात की। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, जबां सब समझते हैं जज्बात की। कि मुकद्दर मेरी चश्मे पुर आब का, बरसती हुई रात बरसात की। कि कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहां दिन गुजारा कहां रात की। एक खूबसूरत गजल भी लिखी है बशीर बद्र साहब ने। जी दोस्तों, प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो शामी गज़ल, एंड आज दे प्रोग्राम दे विच असी दो तो तीन गज़लां जिहड़ियां ने पढ़न की कोशिश की है बशीर बद्र साहब दियां, जो कि अज सानू इस दुनिया नू अलविदा आ गए ने, पर पिछे बहुत सारियां गज़लां शायरियां साढ़े लिए छड़ चुके ने, जिन्हां नू पढ़ पढ़ के समझ समझ के बहुत सारे लोग जिहड़े ने शायद अपनी जिंदगी सवारनगे या अपने थॉट्स उन्हां विच लभणगे, क्योंकि शायर कवि जो लिखता है वह दुनिया तो जिंदगी तो ही इंस्पायर हो के अपनी खुद की जिंदगी या लोगों देख के जो उन्होंने थॉट्स आते हैं उसको पेन डाउन कर देते हैं। सो उस नाल ही बहुत सारे लोग जो शायद लिख नहीं पाते बोल नहीं पाते वो रिलेट करते हैं। सो बहुत खूबसूरत लिखी एक एक चीज़ बशीर बद्र साहब ने।

102 6.7 मेगाहर्ट्ज से तुसी इंजॉय कर रहे प्रोग्राम शामी गजल। फिलहाल रात दे 10 बज के 30 मिनट हो चुके ने और हुण इंजॉय करते हैं प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है।

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। प्यारे दोस्त, एंजॉय कर इसी प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है। फिलहाल रात दे 10:55 हो चुके ने, आओ हुण एंजॉय करते इस प्रोग्राम दा आखिरी

जी हाँ दोस्तों, इसे गीत नाल थोड़े को लवांगा मैं विदा कि किसी होर दिन आपां जल्दी मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वक्त रात दे पूरे 11 बज चुके ने ते साड़ी आज दे सभा दे सारे ही प्रोग्राम हुण इत्थे खत्म होंदे ने। दोबारा फिर मिलेंगे सवेरे 5:55 ते नवे दोस्त नवे प्रोग्रामा दे नाल। तद तक लई सानू दवो इजाजत। शब्बा खैर, जय हिंद।